0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। খন্তেক পাছতেই ক্ৰমে হিন্দী আৰু ইংৰাজীত বাতৰি শুনিবলৈ পাব।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মই মুকেশ কুমাৰ বল। गृहमंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। विधेयक के अंतर्गत संविधान की पहली अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। लोकसभा ने इसे कल ही पारित कर दिया है। राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पर भी विचार और उसे पारित करने की संभावना है। वहीं लोकसभा में खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और उसे पारित करने की प्रक्रिया होगी। कल विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही एक बार फिर बाधित रही। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। संसद परिसर में उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है।
2: राहुल गांधी जी कई दिनों से गृह मंत्री अमित शाह का जवाब मांग रहे हैं सदन में। अब जब सरकार तैयार है, गृह मंत्री जी पूरे घटनाओं का बहुत डिटेल में जवाब देने के तैयार है, फिर राहुल गांधी जी भाग रहे हैं। मैंने इसलिए सदन में कहा कि भागना नहीं है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा ट्रायंफ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माय लाइफ माय स्ट्रगल्स का विमोचन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ये आत्मकथा पूर्व राष्ट्रपति

0: रामनाथ कोविंद के जीवन की यात्रा का एक अत्यंत व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। ये पुस्तक उन मूल्यों, अनुभवों और परिस्थितियों की जानकारी देती है जिन्होंने उनकी यात्रा और सार्वजनिक सेवा को आकार दिया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाली अमावस्या के अवसर पर नई दिल्ली में व्यापक पौधारोपण अभियान की शुरुआत करेंगे। श्री चौहान की अपील पर वृक्ष मित्र अभियान से जुड़े देश भर के हजारों सदस्य भी अपने अपने गांवों और शहरों में पौधारोपण अभियान चलाएंगे। इस अवसर पर देश भर में 50,000 से अधिक पौधे लगाने का संकल्प लिया गया है। झारखंड में भाजपा के आह्वान पर बंद के चलते राज्य के कई हिस्सों में कल जनजीवन प्रभावित रहा। रांची में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा की ओर मार्च करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोककर हिरासत में ले लिया। इस बीच झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन कल 18वें दिन भी जारी रहा। विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज और झड़प के बाद छात्र नेताओं ने आंदोलन और तेज करने की घोषणा की थी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने शेयर बाजारों को वित्तीय नतीजों को जमा करने संबंधी अपने विनियमों के अंतर्गत सूचीबद्ध ऋण साधन वाले नगर पालिकाओं की समय सीमा में छूट दी है। कल जारी किए गए नियमों के अंतर्गत सूचीबद्ध नगर पालिकाओं को अब बिना ऑडिट वाले पहली छमाही के नतीजे 60 दिनों के भीतर जमा करने होंगे, जबकि पहले ये समय सीमा 45 दिन की थी। भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य तथा अभिन्न अंग है और इस निर्विवाद वास्तविकता को कोई नहीं बदल सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक है। श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है।
1: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में अभी कुछ महीनों में जो वहां पर मानवाधिकार का हनन हुआ, जिस प्रकार से लोग मारे गए, एक बार फिर से इस बात को उजागर करता है। और जहां तक लोगों के मानवाधिकार के पक्ष को गारंटी करने की बात आती है, उसमें पाकिस्तान को बहुत कुछ करना है। और हमको लगता है कि जो अभी हाल ही के हिंसा में इतने लोग मारे गए हैं, उस पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चिंता करने की जरूरत है और साथ ही साथ में पाकिस्तान को जवाबदेही ठहराए जाने की जरूरत है।
0: नाइजीरिया के लागोस में आयोजित कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में भारत ने पदक जीतने का शानदार सिलसिला जारी रखा है। करुण सिंह और शेरजिन शांतिमोल ने कल रात सीनियर पुरुष स्पर्धाओं में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पंजाब, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिमी राजस्थान, गोवा और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय तन्वी खुराना। Union Home Minister Amit Shah is scheduled to move the Kerala Alteration of Name Bill 2026 for consideration and passing in Rajya Sabha today to alter the name of Kerala. The Lok Sabha had passed the bill yesterday. Rajya Sabha is also likely to take up the National Cooperative Development Corporation Amendment Bill 2026 for consideration and passing today. In the Lok Sabha, the Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill 2026 will be tabled for consideration and passing. Yesterday, the proceedings of both the Houses of Parliament were once again disrupted following opposition uproar on various issues. Lok Sabha passed the National Cooperative Development Corporation Amendment Bill 2026 and the Rajya Sabha passed the Tribunals Reforms Bill 2026. India has reiterated that Arunachal Pradesh is an inalienable and integral part of India and nothing can change this indisputable reality. Briefing media in New Delhi yesterday, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said, in matters relating to the border areas between India and China, New Delhi always emphasized that the maintenance of peace and tranquility in these areas is of utmost importance for the overall development of bilateral relations with China.
1: In the last several months, we have seen that during the elections and before that also.

0: প্ৰদানৰ বাবে কেবিনেটে অনুমোদন জনাইছে। মন্ত্ৰীসভাই অসম কাৰাগাৰ বিধি আৰু অসম অধীক্ষক আৰু কাৰাগাৰৰ ব্যৱস্থাপনা বিধি 2022ৰ অধীনত কাৰাগাৰসমূহৰ তদাৰকী আৰু ব্যৱস্থাপনাৰ নিয়ম সংশোধনতো অনুমোদন জনাইছে। মন্ত্ৰীসভাই লগতে এ পি ডি চি এল আৰু এ পি জি চি এল অইল গ্ৰীণ পাৱাৰ লিমিটেডৰ মাজত 25 বছৰৰ বাবে 25 মেগাৱাটৰ বিদ্যুৎ নামৰূপ সৌৰ পি ভি প্ৰকল্পৰ পৰা প্ৰতি ইউনিটত 3.45 টকা দৰত ক্ৰয় কৰাৰ বাবে বিদ্যুৎ ক্ৰয় চুক্তি সম্পাদনতো অনুমোদন জনাইছে। ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতি সুস্থিৰ হৈছে যদিও 7খন জিলাৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল এতিয়াও বান প্ৰভাৱিত হৈ আছে। সাম্প্ৰতিক বানত 441 গাঁৱৰ 112,718 লোক প্ৰভাৱিত হোৱাৰ লগতে 10,879.03 হেক্টৰ কৃষিভূমি ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। বানত সম্প্ৰতি মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা 101 হৈছেগৈ। বিগত 48 ঘণ্টাত বানৰ ফলত কোনো লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ তথ্য পোৱা নাই। উজনি অসমৰ 4খন জিলাৰ 254খন বিদ্যালয়ত 17 আগষ্টৰ পৰাহে পাঠদান কৰা হ'ব। শিৱসাগৰ জিলাত পাঠদানৰ বাবে উপযোগী নহয় বুলি মুৰব্বী শিক্ষকে প্ৰতিবেদন দিয়া বিদ্যালয়সমূহত কালি পুনৰ পাঠদান আৰম্ভ হয়। জিলাখনৰ বান ক্ষতিগ্ৰস্ত বিদ্যালয়সমূহ পুনৰ আৰম্ভ হোৱা সন্দৰ্ভত বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শকৰ কাৰ্যালয়ে জাৰি কৰা নিৰ্দেশ অনুসৰি বানত এতিয়াও পানীত বুৰ গৈ থকা বিদ্যালয়, বান সাহায্য শিবিৰ হিচাপে ব্যৱহৃত বিদ্যালয় আৰু পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাৰ কাম সম্পূৰ্ণ নোহোৱা বিদ্যালয়সমূহ 17 আগষ্ট পৰ্যন্ত বন্ধ ৰখা হৈছে। যোৰহাট জিলাতো বহু বিদ্যালয় এতিয়াও পাঠদানৰ উপযোগী হৈ নুঠাত জিলা প্ৰশাসনে বান প্ৰভাৱিত এলেকাৰ 66খন বিদ্যালয়ৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধৰ দিন 17 আগষ্ট পৰ্যন্ত বৃদ্ধি কৰিছে। যোৰহাটত ভঙা মথাউৰি মেৰামতিৰ কাম চলি আছে। শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি জিলাখনৰ 5টা স্থানৰ ভিতৰত 4টা স্থানতে মথাউৰি ছিগা অংশৰ মেৰামতিৰ কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু শলমাৰাত এই কাম শেষ পৰ্যায়ত আছে। ইপিনে ৰাজ্যত শেহতীয়া বানত সৰ্বাধিক ক্ষতিগ্ৰস্ত শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ, যোৰহাট আৰু গোলাঘাট জিলা দেওবাৰৰ পৰা ক্ষয় ক্ষতি জৰীপ কৰা হৈছে। প্ৰথম পৰ্যায়ৰ জৰীপ অহা 30 আগষ্টলৈ চলিব। আমাৰ এতিয়াৰ বাতৰি ইমানতে অন্ত পৰিল। পৰৱৰ্তী বাতৰি পুৱা 9 বজাত শুনিবলৈ পাব।
1: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है, मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 144116 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे ये सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। लोकसभा में खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का विमोचन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज सुबह भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना करेंगे। पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी और राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में करण सिंह, शेरजिन शांतिमोल और तनिष्का खत्री ने नाइजीरिया में स्वर्ण पदक जीते। और अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पर भी विचार और उसे पारित करने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
4: केरल नाम परिवर्तन विधेयक का उद्देश्य संविधान की पहली अनुसूची में राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करना है। इस संबंध में केरल विधानसभा ने जून 2024 में एक प्रस्ताव पारित किया था। प्रस्ताव में कहा गया था कि मलयालम में राज्य को केरलम के नाम से जाना जाता है, जबकि संविधान की पहली अनुसूची में इसका नाम केरल दर्ज है। इस बीच खान और खनिज विकास और विनियम संशोधन विधेयक 2026 का उद्देश्य खान और खनिज अधिनियम 1957 में संशोधन करना है। इस विधेयक का उद्देश्य देश के बढ़ते महत्वपूर्ण खनिजों की मांग को पूरा करने के लिए भारत के खनन क्षेत्र को अधिक प्रभावी, निवेश के अनुकूल और सक्षम बनाना है। दिलनशी आरजू की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीषा।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माई लाइफ माई स्ट्रगल्स का विमोचन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक सभा को भी संबोधित करेंगे। यह आत्मकथा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की जीवन यात्रा का एक व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। ये पुस्तक उन मूल्यों, अनुभवों और परिस्थितियों की जानकारी देती है जिन्होंने उनकी यात्रा और सार्वजनिक सेवा को आकार दिया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाली अमावस्या के अवसर पर नई दिल्ली में एक व्यापक वृक्षारोपण अभियान का संचालन करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के वृक्ष मित्र अभियान से जुड़े देश भर के हजारों सदस्य भी उनकी अपील पर अपने अपने गांवों और शहरों में वृक्षारोपण अभियान में भाग लेंगे। नागरिकों से आग्रह करते हुए श्री चौहान ने कहा कि हरियाली अमावस्या प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर प्रदान करने वाला त्योहार है। श्री चौहान ने कहा कि प्रकृति के प्रति कृतज्ञता केवल शब्दों से ही व्यक्त नहीं की जानी चाहिए बल्कि वृक्षारोपण के माध्यम से भी प्रदर्शित की जानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पौधा लगाना केवल पर्यावरण संरक्षण का कार्य ही नहीं है बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित, संरक्षित और सुंदर भविष्य की नींव रखने का भी एक तरीका है। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज सुबह भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना करेंगे। ये रैली स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा है। इसका उद्देश्य नागरिकों में राष्ट्रभक्ति की भावना को और मजबूत करना है। रैली में बड़ी संख्या में युवा, स्वयंसेवी संगठन और विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। अभियान के अंतर्गत देशभर के लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और राष्ट्रध्वज के प्रति सम्मान व्यक्त करने का आह्वान किया जाएगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज सुबह मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से हर घर तिरंगा साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री मांडविया ने दिल्ली विश्वविद्यालय के माय भारत वॉलंटियर्स के साथ इस रैली का नेतृत्व किया। इस अवसर पर श्री मांडविया ने कहा कि इस रैली से पूरे देश में फिटनेस का संदेश जाएगा।
2: दिल्ली में माय भारत के 1000 से अधिक वॉलंटियर्स ने हर घर तिरंगा साइकिल यात्रा के द्वारा देश को फिटनेस का संदेश दिया है। कोई भी राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनना है तो देश के नागरिक स्वस्थ रहे बहुत आवश्यक है। साइकिलिंग ये फिटनेस का संदेश है, पोल्यूशन का सॉल्यूशन है। चलो हम सब लोग हमारी तिरंगा की आन बान और शान के लिए, देश के युवा फिट रहे, इस हेतु को सिद्ध करने के लिए साइकिलिंग करते रहे।
0: जम्मू कश्मीर में आज श्रीनगर के प्रसिद्ध डल झील के किनारे बुलवर्ड रोड पर एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रैली का नेतृत्व किया जिसमें हजारों विद्यार्थी, सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी और समाज के विभिन्न वर्गों के लोग शामिल हुए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि राज्य सरकार जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए एक विधेयक लाने की योजना बना रही है। बांकुरा में कल पश्चिमांचल उन्नयन परिषद की बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जल्द ही एक समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में युवाओं, विशेषकर जेन जी से जुड़ने और कविता के जरिए उनके विचारों को समझने के लिए एक अनोखी पहल शुरू की गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रंग दे बसंती कैंपेन कल शुरू हुआ और ये 14 अगस्त तक राज्य के अलग अलग शहरों में चलेगा।
3: कल रात प्रयागराज की हिंदुस्तानी अकादमी में अपनी कविताओं के माध्यम से माफिया संस्कृति पर निशाना साधा। कार्यक्रम समन्वयक विश्वदीप शुक्ला ने बताया कि वीर रस और ओज रस की कविताओं के माध्यम से युवा पीढ़ी की भावनाओं को समझने वाले 8 कवियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रख्यात गीतकार डॉक्टर विनम्र सेन सिंह और अंतर्राष्ट्रीय कथाकार आचार्य शांतनु जी महाराज ने की। अगला कार्यक्रम आज लखनऊ में आयोजित किया जाएगा। कल मुजफ्फरनगर में कॉमिक्स वितरण और संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा जो युवाओं को जोड़ने के लिए कई रचनात्मक माध्यमों को एक साथ लाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: झारखंड में JPSC JSSC परीक्षार्थियों का विरोध प्रदर्शन 19वें दिन में प्रवेश कर गया है।

0: विद्यार्थी कथित परीक्षा अनियमितताओं के खिलाफ
1: के नेतृत्व में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का आंदोलन जारी है। छात्र संदिग्ध परीक्षाओं को रद्द करने, सीबीआई जांच और भर्ती प्रक्रिया में सुधार की मांग दोहरा रहे हैं। छात्रों ने कल शाम मौन जुलूस निकाला और कहा कि इसका उद्देश्य अपनी मांगों को शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से उठाना है। इसके बाद जिला प्रशासन के अधिकारियों की एक टीम जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंची और आमरण अनशन पर बैठे छात्रों से बातचीत की। छात्रों ने दोहराया कि उनकी प्रमुख मांगें पूरी होने तक आंदोलन और आमरण अनशन जारी रहेगा। मैं विश्व रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज वैज्ञानिक और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर विक्रम साराभाई को उनकी जयंती पर स्मरण किया। श्री बिरला ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉक्टर साराभाई का मानना था कि विज्ञान को केवल प्रयोगशालाओं तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसका उद्देश्य आम आदमी के जीवन को बेहतर बनाना होना चाहिए। कर्कटिका वावू के अवसर पर आज सुबह केरल में हजारों श्रद्धालुओं ने पितृतर्पण देना शुरू किया। हिंदू परंपरा में मलयालम महीने कर्कटम की अमावस्या को दिवंगत आत्माओं की शांति और आध्यात्मिक मुक्ति के लिए अनुष्ठान करने का सबसे पवित्र दिन माना जाता है। अधिकांश मंदिरों में यह अनुष्ठान सुबह 3:30 बजे से 5 बजे के बीच शुरू हुए। समाचार सेवा प्रभाग की विशेष श्रृंखला पर्सन बिहाइंड द स्टोरी के अंतर्गत आगामी कड़ी में आज हम दुनिया के पहले तीनों सेनाओं के महिला नेतृत्व वाले समुद्र यात्रा अभियान का हिस्सा रहीं विंग कमांडर विभा सिंह, स्क्वाड्रन लीडर वैशाली भंडारी और मेजर प्राजक्ता पी निकम से बातचीत करेंगे। इस बातचीत को आज शाम 5:10 से 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर सुना जा सकता है। श्रोता इस कार्यक्रम को न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण कल सुबह 9:10 से किया जाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों तक देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों, सिक्किम, हिमालयी पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, पश्चिम मध्य प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, कोंकण, गोवा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर के साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मॉनसून की वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी है, जिसके चलते कई स्थानों में सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। मंडी जिला प्रशासन ने भारी बारिश के कारण भूस्खलन और पत्थर गिरने के खतरे के दृष्टिगत मंडी कुल्लू राष्ट्रीय उच्च मार्ग 21 और मंडी जोगिंदर नगर राष्ट्रीय उच्च मार्ग 154 पर यातायात बीती रात से ही पूर्णतः बंद रखा है। 45 विद्युत ट्रांसफार्मर जबकि 82 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज प्रदेश के 6 जिलों कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, शिमला, चंबा और लाहौल स्पीति में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई जिलों में आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
3: मौसम विज्ञान विभाग ने आज उड़ीसा में व्यापक बारिश का अनुमान लगाया है, जिसमें ज्यादातर जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बेछोरे पड़ने की संभावना है। उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे इलाकों में ऊपरी हवा में चक्रवाती परिसंचरण के कारण आज उसी क्षेत्र में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इस सिस्टम से उड़ीसा में बारिश की गतिविधि बढ़ने की उम्मीद है। IMD ने अनुगुल और केंदुझर जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की है। मछुआरों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: नाइजीरिया के लागोस में आयोजित राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने पदक जीतने का शानदार सिलसिला जारी रखा है। करण सिंह और शेरजिन शांति मोल ने कल रात सीनियर पुरुष स्पर्धाओं में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर सबसे ऊपर छाई खबरें हैं। झारखंड में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जारी नोक झोंक। और हाल ही में फुकेट से नई दिल्ली आ रहे एयर इंडिया विमान में

0: स्थिरता की जांच में सामने आई कुछ नई बातें। लोक सत्य की पहली सुर्खी है, पक्ष विपक्ष का आमने सामने प्रदर्शन, संसद में हंगामा। नवभारत टाइम्स ने इसी खबर को सचित्र प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है, ऐसे भिड़े सांसद हो गई धक्का मुक्की। जनसत्ता में इस खबर का शीर्षक है, संसद परिसर में सत्ता पक्ष विपक्ष के सांसद आमने सामने, भारी हंगामा। पिछले सप्ताह फुकेट से नई दिल्ली आ रही एयर इंडिया की उड़ान के अचानक 300 फुट नीचे आने के मामले में हुई जांच को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए जनसत्ता ने शीर्षक दिया है, मारिहुआना के प्रभाव में था पायलट। जबकि अमर उजाला की सुर्खी है, एयर इंडिया पायलट गांजा के नशे में था, सहयोगी उड़ा रहा था विमान। पत्र ने पायलट एसोसिएशन द्वारा रखे पक्ष को भी शीर्ष समाचार में जगह देते हुए लिखा है, टर्बुलेंस मामले में पायलट एसोसिएशन ने कहा, हाइड्रोलिक में खराबी से हुई घटना। दैनिक भास्कर ने मतदाताओं को लुभाने के लिए कुछ राज्यों में बांटे जा रहे उपहारों के मुद्दे को अपनी संपादकीय लेख का विषय बनाया है और शीर्षक दिया है, कम से कम गरीब राज्य तो रेवड़ी संस्कृति से दूर रहें।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। लोकसभा में खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का विमोचन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज सुबह भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना करेंगे। पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Union Home Minister Amit Shah to move the Kerala Alteration of Name Bill 2026 for consideration and passing in Rajya Sabha today to alter the name of Kerala. In Lok Sabha, Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill to be tabled for consideration and passing. Prime Minister Narendra Modi to release autobiography of former President Ramnath Kovind in New Delhi today. Vice President C.P. Radhakrishnan to flag off Har Ghar Tiranga bike rally at Bharat Mandapam in a short while. Alert issued for heavy rainfall over East Rajasthan, Madhya Maharashtra, Odisha, Jharkhand and Gangetic West Bengal today. And in Commonwealth Fencing Championship, Karan Singh, Sharjin Shantimol and Tanishka Khatri clinch gold medals in Lagos, Nigeria. And now the news in detail. Union Home Minister Amit Shah is scheduled to move the Kerala Alteration of Name Bill 2026 for consideration and passing in Rajya Sabha today to alter the name of Kerala. In Lok Sabha, Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill 2026 is to be tabled for consideration and passing. More from our correspondent.
3: The Kerala Alteration of Name Bill seeks to change the name of State of Kerala to Keralam in the first schedule of the Constitution. A resolution in this regard was passed by the Kerala Legislative Assembly in June 2024. The resolution stated that while the state is known as Keralam in Malayalam, its name is recorded as Kerala in the first schedule of the Constitution. Meanwhile, the Mines and Mineral Development and Regulation Amendment Bill 2026 aims to amend the Mines and Mineral Development and Regulation Act 1957. The bill aims to make India's mining sector more efficient, investment-friendly and well-equipped to fulfill the country's growing demand for critical minerals. Dilnashi Yarzu, Akashwani News, Delhi.
2: Prime Minister Narendra Modi will release the autobiography of former President Ramnath Kovind titled Triumph of the Indian Republic, My Life, My Struggles in New Delhi today. The Prime Minister will also address a gathering on the occasion. The autobiography offers a deeply personal account of former President Ramnath Kovind's life journey, tracing his experiences, struggles and achievements from his early years to his distinguished public life and eventual service as the 14th President of India. The book provides insights into the values, experiences and circumstances that shaped his journey and public service. various

0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। খন্তেক পাছতেই ক্ৰমে হিন্দী আৰু ইংৰাজীত বাতৰি আৰু 12:10ৰ পৰা সৈন্যবাহিনীৰ উদ্দেশ্যে প্ৰচাৰিত অনুষ্ঠান শুনিবলৈ পাব।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মই ফৰহতনাজ। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है। संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शाह ने कहा कि विपक्ष आज ही चर्चा के लिए सदन में उपस्थित हो। उन्होंने कहा कि हमारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर को मिले चंदे में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से सदन की कार्यवाही चलाने देने की अपील की। अध्यक्ष ने कहा कि सरकार विपक्ष की मांग पर सहमत हो गई है और गृहमंत्री अमित शाह बयान देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने सत्ता पक्ष और विपक्ष से सहमति बनाने तथा संवाद के जरिए आगे बढ़ने की अपील की। लगातार हंगामा जारी रहने के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों पर हंगामा किया, जिस वजह से सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा भारतीय गणराज्य की विजय मेरा जीवन मेरा संघर्ष का विमोचन किया। ये आत्मकथा श्री कोविंद के उल्लेखनीय जीवन सफर का एक व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद का मार्गदर्शन उनके लिए शक्ति का एक बड़ा स्रोत रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने युवा पीढ़ी से रामनाथ कोविंद के जीवन की कहानी उन्हीं के शब्दों में जानने और उनके लेखन और अनुभवों को पढ़ने का आग्रह किया।
2: हमें भविष्य में कोविंद जी जैसे अनेकों युवा चाहिए जो परेशानियों से परास्त न हो, जो मुश्किलों से मायूस न हो, बल्कि अपनी मेहनत से हर मंजिल को आसान बनाने का हौसला रखे। इसी बदलाव से सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प पूरा होगा। यहीं से आत्मनिर्भर और विकसित भारत का रास्ता बनेगा।
1: इस अवसर पर श्री कोविंद ने कहा कि राजनीति केवल सत्ता हासिल करने का साधन नहीं है, बल्कि राष्ट्र की सेवा करने का एक जरिया भी है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 संस्थागत पारदर्शी और जवाबदेह न्यायाधिकरण प्रशासन की दिशा में परिवर्तनकारी बदलाव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ये राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग को एक मजबूत न्यायाधिकरण प्रणाली के केंद्र में रखता है। एक अंग्रेजी दैनिक के लिखे लेख में श्री मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक न्यायाधिकरणों के मूल अधिकार क्षेत्र में कोई परिवर्तन किए बिना उनकी शासन संरचना को मजबूत करने का प्रयास करता है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि सेवानिवृत्त आरआरपीएस डॉक्टर भूमा वीजी को मॉरिशस के अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक सर्विस एंड इनोवेशन एआईपीएसआई के कुलपति पद के लिए चुना गया है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि एआईपीएसआई मॉरिशस का पूर्व सिविल सर्विस कॉलेज है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम ने मार्च 2025 में संयुक्त रूप से किया था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना किया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नागरिकों से स्वतंत्रता दिवस को सम्मान गर्व और गौरव के साथ मनाने और विकसित भारत का संकल्प लेने का आग्रह किया। जम्मू कश्मीर में आज श्रीनगर के प्रसिद्ध डल झील के किनारे बुलेवार्ड रोड पर एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। ब्यूरो हमारे संवाददाता से।
3: छात्र संदिग्ध परीक्षाओं को रद्द करने, सीबीआई जांच और भर्ती प्रक्रिया में सुधार की मांग दोहरा रहे हैं। छात्रों ने कल शाम मौन जुलूस निकाला और कहा कि इसका उद्देश्य अपनी मांगों को शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से उठाना है। इसके बाद जिला प्रशासन के अधिकारियों की एक टीम जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंची और आमरण अनशन पर बैठे छात्रों से बातचीत की। छात्रों ने दोहराया कि उनकी प्रमुख मांगे पूरी होने तक आंदोलन और आमरण अनशन जारी रहेगा। मैं विश्व रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने अमेरिका में आयोजित ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता सिंकफील्ड कप के दूसरे दौर में जावखोरिन सिंदारोव को हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही प्रज्ञानंदा 2 मैचों में 1.5 अंक पर पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani. The news read by Sarabjit Kaur. Both the Houses of Parliament have been adjourned till 2 p.m. following opposition uproar over several issues, including alleged police action during students' protests over the NEET issue. When the Lok Sabha assembled at 11 a.m., Lok Sabha Speaker Om Birla tried to take up the question hour, but the opposition members raised the issue of alleged police action during students' protests and alleged anomalies in Ayodhya Ram Mandir donations. Mr. Birla said, "Today the country is celebrating International Youth Day, and the youth of the country also want discussions on issues concerning them." The Speaker urged the opposition members not to undermine the dignity of Parliament and allow the House to take up question hour, but the opposition were on their feet pressing their demand. However, due to continuous uproar by the opposition members, the Speaker adjourned the House till 2 p.m. Prime Minister Narendra Modi today released the autobiography of former President Ram Nath Kovind titled Triumph of the Indian Republic, My Life, My Struggles, in New Delhi. The autobiography offers a deeply personal account of Mr. Kovind's remarkable life journey, tracing his experiences, struggles and achievements from his early years to his distinguished public life and eventual service as the 14th President of India. Speaking on the occasion, Mr. Modi said that Mr. Kovind's autobiography will not only provide insights into his life, personality and contributions, but also serve as a legacy for Indian democracy and society.
2: हमें भविष्य में कोविंद जी जैसे अनेकों युवा चाहिए जो परेशानियों से परास्त न हो, जो मुश्किलों से मायूस न हो, बल्कि अपनी मेहनत से हर मंजिल को आसान बनाने का हौसला रखे। इसी बदलाव से सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प पूरा होगा। यहीं से आत्मनिर्भर और विकसित भारत का रास्ता बनेगा।
4: Union Minister of State for Law and Justice Arjun Ram Meghwal today underlined that the Tribunal Reforms Bill 2026 marks a transformative shift towards institutionalized, transparent and accountable tribunal governance, placing the National Tribunals Commission at the core of a stronger tribunal ecosystem. Writing an article for an English daily, the minister noted that the bill seeks to strengthen the governance architecture of tribunals without altering their substantive jurisdiction. Mr. Meghwal added that the bill represents the next stage of a broader reform journey aimed at making India's legal and regulatory ecosystem more modern, predictable and effective. Vice President C.P. Radhakrishnan has said that the spirit of Vande Mataram had inspired India's freedom struggle and continues to strengthen the nation's identity today. He said this while addressing the participants of Har Ghar Tiranga bike rally organized by the Culture Ministry, marking 150 years of the national song. The Vice President said that the words of Vande Mataram had ignited patriotism and united people across regions, languages, faiths and backgrounds. Union Science and Technology Minister Dr. Jitinder Singh has paid tribute to ISRO's first chairman, Dr. Vikram Sarabhai, on his birth anniversary today. In a social media post, Dr. Singh described Mr. Sarabhai as one of the founding fathers of India's space program. In Himachal Pradesh, 4 people were killed in an accident while 9 others were injured after a Bolero pickup vehicle fell into a deep gorge at Gatlong in Sirmaur district. The condition of 2 of the injured is reported to be critical. The injured have been referred to the medical college in Nahan for treatment. The police are currently investigating the matter. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.7% lower in the forenoon session today. The Sensex shed 555 points to 77,599, while the Nifty dropped 177 points to 24,295 when reports last came in. Indian Grandmaster R. Pragananda defeated Javakir Sindrov in a second round match of the Sinkfield Cup in St. Louis, United States. In his first victory in the tournament, which is the penultimate event of the Grand Chess Tour. And that is the end of this news bulletin.
5: ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग्ज्योतिषपुर है. मीडियम वेव 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज पर. इस समय दिन के 12:10 हुए हैं. आरंभ करते हैं हमारा आज का सैनिक भाइयों का प्रसारण.

12:38 पर कार्यक्रम फिल्मी नगमे, 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार, 1:10 पर कार्यक्रम तरंग और 1:40 पर कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। दिन के 2 बजे से बारी बारी से आप सुनेंगे अंग्रेजी और हिंदी में समाचार। दिन के 2:30 का समय है कार्यक्रम प्रीत लड़ी का। इसी के साथ हमारे आज के प्रसारण का समापन होगा दिन के 3 बजे। और फौजी भाइयों, इन्हीं कार्यक्रमों को लेकर आज आपके साथ रहूंगी मैं, गुना प्रभा बोरा।

फौजी भाइयों लीजिए प्रस्तुत है हमारा पहला कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अभिजीत श्रीवास्तव के गाए इस गीत से। फिल्म का नाम है भारत।

लीजिए, अब सुनिए कार्यक्रम के आखिर में हमसे है मुकाबला फिल्म का ये गीत, आवाजें एसपी बाला सुब्रमण्यम, उदित नारायण और एसपीवी पल्लवी की।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर, 1035 किलोहर्ट्स और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्स पर। फौजी भाइयों, लीजिए प्रस्तुत है हमारा दैनिक कार्यक्रम आज का गीत। आज इसके अंतर्गत हम आपको सुनवाएंगे डर फिल्म का एक गीत। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीत दिया है शिव हरि ने। आइए सुनिए गीत उदित नारायण से।

फौजी भाइयों, हमारा अगला कार्यक्रम सुनवाने से पहले आइए आपको बता दें कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। कल गुरुवार है, रोजाने की तरह हमारा कल का कार्यक्रम आरंभ होगा 12:10 पर। 12:12 पर आप सुनेंगे हमारा पहला कार्यक्रम फिल्म संगीत और 12:30 पर कार्यक्रम आज का गीत।

12:38 पर कार्यक्रम साज और आवाज, 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार, 1:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम स्वर छाया और 1:40 का समय है कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत का।

दो बजे से बारी बारी से आप सुनेंगे अंग्रेजी और हिंदी में समाचार। दिन के 2:30 का समय है कार्यक्रम गीत रंगीले का। इसी के साथ हमारे कल के प्रसारण का समापन होगा दिन के 3 बजे। फौजी भाइयों, ये थी कल के कार्यक्रमों की जानकारी।

खुले में शौच ना करें, विज्ञान सम्मत शौचालय का व्यवहार करें। खाने से पहले और शौच के बाद आप अपने दोनों हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोएं।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर, 1035 किलो हर्ट्स और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलो हर्ट्स पर। फौजी भाइयों लीजिए अब पेशे खिदमत है कार्यक्रम फिल्मी नगमे। कार्यक्रम का आगाज करेंगे मोहम्मद रफी के गाए इस नगमे से। फिल्म है सन ऑफ इंडिया।

0: Addressing the participants, Vice President C.P. Radhakrishnan has said that the spirit of Vande Mataram had inspired India's freedom struggle and continues to strengthen the nation's identity today. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारे इस प्रसारण में फौजी भाइयों आप सभी का फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है।

फौजी भाइयों, लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम तरंग। आपको बता दें, हमारा आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेता सैफ अली खान पर। 16 अगस्त 1970 को नई दिल्ली में अभिनेत्री शर्मिला टैगोर और नवाब मंसूर अली खान के घर पहली संतान का जन्म हुआ। नाम रखा गया सैफ अली खान पटौदी। ये पटौदी खानदान के 10वें नवाब हैं। सैफ अली खान ने बतौर अभिनेता हिंदी फिल्मों में लंबा सफ़र तय किया है। रोमांटिक किरदारों से शुरुआत करके सैफ अली खान ने इमोशनल, ड्रामा, एक्शन और कॉमेडी फिल्मों में भी यादगार किरदार निभाए हैं। फौजी भाइयों, आगे बढ़ेंगे, उससे पहले आपको सुनवाते हैं दिल तेरा दीवाना फिल्म का ये गीत, आवाज़ें उदित नारायण और अलका याग्निक की।

सैफ अली खान ने हिमाचल प्रदेश के सनावर के द लॉरेंस स्कूल से अपनी शुरुआती शिक्षा पूरी की। इसके बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई हार्टफोर्ड शायर के लॉकर्स पार्क स्कूल से की। वहीं उच्च शिक्षा उन्होंने इंग्लैंड के विंचेस्टर कॉलेज से पूरी की। अब सुनते हैं कॉकटेल फिल्म का ये गीत, जिसे गा रहे हैं मिस पूजा और नेहा कक्कड़।

स्नातक करने के बाद सैफ अली खान भारत लौट आए और 2 महीने तक दिल्ली की एक एड कंपनी में काम किया। वहीं फिल्मों में अभिनय की शुरुआत उन्होंने फिल्म परंपरा के साथ की। बीच में उनकी कई फिल्में नहीं चली। वहीं साल 2000 में उन्होंने फिल्म क्या कहना के साथ खुद को स्थापित किया एक अच्छे अभिनेता के तौर पर। इसके बाद उन्हें रोमांटिक व कॉमेडी ड्रामा फिल्म दिल चाहता है और कल हो ना हो के लिए कई अवार्ड्स भी जीते। तो आइए फौजी भाइयों, आपको सुनवाते हैं क्या कहना फिल्म का ये गीत, जिसे गा रहे हैं अलका याग्निक, सोनू निगम और कुमार सानू।

कमर्शियल सफल फिल्मों में हम तुम, परिणीता, सलाम नमस्ते और तारा रमपम के साथ सैफ अली खान का करियर ग्राफ तेजी से आगे बढ़ा। उसके अलावा उनके खाते में लव आजकल, कुर्बान, कॉकटेल, तानाजी और लाल कप्तान जैसी कई बड़ी फिल्में भी रहीं। तो फौजी भाइयों, आइए आपको सुनवाते हैं हम तुम फिल्म का गीत, जिसे गाया है अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो ने।

सैफ अली खान ने एक हसीना थी, बींग साइरस और ओमकारा जैसी फिल्मों से क्रिटिक्स का भी दिल जीता। बतौर लीड एक्टर उनकी सबसे बड़ी हिट फिल्मों में रेस, लव आजकल, कॉकटेल, रेस टू और तानाजी शामिल हैं। सैफ अली खान की फिल्म गो गोवा गॉन भी एक चर्चित फिल्म है जो बॉक्स ऑफिस पर ज़्यादा कमाई तो नहीं कर पाई, लेकिन देश की पहली जॉम्बी फिल्म होने का टैग रखती है। तो फौजी भाइयों, जाते जाते आपको सुनवाते हैं रेस फिल्म का ये गीत, आवाज़ें प्रीतम, नीरज और मोनाली की।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। फौजी भाइयों लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। आज इसके अंतर्गत आप सुनेंगे चंद मराठी गीत। सबसे पहले सुनिए सचिन और अनुराधा पौडवाल से ये गीत।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार, विपक्ष से संसद चलने देने का आग्रह। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण आज भी बाधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का युवाओं से आत्मकथा पढ़ने और रील्स तथा सोशल मीडिया की शॉर्टकट संस्कृति से बचने का आग्रह। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर का अनाथ और विधवा

0: सर में पत्रकारों से बातचीत में श्री शाह ने कहा कि सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है और वो चर्चा के लिए तैयार है।
1: आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दें, 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं, देश की जनता के सामने सारी चीजें स्पष्ट हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।
0: श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रही।
1: विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए।
0: वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि विपक्ष नीट प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाबदेही मांग रहा है। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में श्री गांधी ने कहा कि विपक्ष को गृहमंत्री के किसी भी बयान में कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि वो जवाबदेही चाहता है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है। लोकसभा में आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों को प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर को मिले चंदे में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की। राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही सुबह शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालयों के दस्तावेज सदन के पटल पर रखे। विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। इस समय दोनों सदनों की कार्यवाही जारी है। झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC सहित प्रदेश की अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर राजधानी रांची में विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन 19वें दिन भी जारी है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: छात्र नेता रविंद्र पासवान ने कहा कि सरकार द्वारा उनकी मांगे स्वीकार किए जाने तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से छात्रों के साथ संवाद करने की अपील की। प्रदर्शनकारियों के अनुसार वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी देर रात आंदोलन स्थल पर पहुंचे और आमरण अनशन कर रहे छात्रों से अनशन समाप्त करने का आग्रह किया। हालांकि छात्रों ने अनशन जारी रखने की बात कही और बताया कि आंदोलन की आगे की रणनीति कोर कमेटी तय करेगी। इस बीच झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र कल निर्धारित समय से एक दिन पहले ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। परीक्षा विवाद और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर सदन में लगातार हंगामा हुआ। छात्रों का कहना है कि केवल परीक्षा रद्द करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच कर दोषियों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से आग्रह किया है कि वो अपने प्रिय व्यक्ति की आत्मकथा पढ़ें और रील्स तथा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के युग में शॉर्टकट अपनाने से बचें। उन्होंने विकसित भारत के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित युवाओं की निरंतर आवश्यकता पर भी बल दिया।
3: हमें भविष्य में कोविंद जी जैसे अनेकों युवा चाहिए जो परेशानियों से परास्त न हो, जो मुश्किलों से मायूस न हो, बल्कि अपनी मेहनत से हर मंजिल को आसान बनाने का हौसला रखे। इसी बदलाव से सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प पूरा होगा। यही से आत्मनिर्भर और विकसित भारत का रास्ता बनेगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा भारतीय गणराज्य की विजय मेरा जीवन मेरा संघर्ष का विमोचन किया। ये आत्मकथा श्री कोविंद के उल्लेखनीय जीवन सफर का एक व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद का मार्गदर्शन उनके लिए शक्ति का एक बड़ा स्रोत रहा है।
3: कोविंद जी ने ये काम हम सबके लिए किया है, क्योंकि उनके जीवन में ऐसा कितना कुछ है जिसमें गरीब वंचित तबके से आए तमाम लोग अपने जीवन की परछाई देख सकते हैं। कैसे एक साधारण परिवार मुश्किल हालातों में भी जीवन की शुचिता और ईमानदारी से समझौता नहीं करता।
0: इस अवसर पर श्री कोविंद ने कहा कि राजनीति केवल सत्ता हासिल करने का साधन नहीं है, बल्कि राष्ट्र की सेवा करने का एक माध्यम भी है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं। राज्य सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर का अनाथ और विधवा उपकर

0: और व्यापार भारत की विकास यात्रा के दो प्रमुख आधार हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप का शुभारंभ करेंगे। ये ऐप गुजरात के गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र की विभिन्न लाइब्रेरियों को एक साथ जोड़ने के लिए विकसित किया गया है। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने हथकरघा क्षेत्र में एक बड़े बदलाव का आह्वान किया है। उन्होंने उद्योग को पुनर्जीवित करने और बुनकरों तथा कारीगरों के लिए नए अवसर सृजित करने के लिए नवाचार, बाजार उन्मुख डिजाइन और टिकाऊ उत्पादन पर बल दिया। नई दिल्ली में भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले वार्षिक सम्मेलन सूत्र 2026 में श्री सिंह ने ये बात कही। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है।
1: इस वर्ष हर घर तिरंगा 2026 अभियान वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के जज्बे को समर्पित है। यह अभियान देशभक्ति, तिरंगे के प्रति गर्व और हमारे राष्ट्रगीत में झलकने वाले मातृभूमि के प्रति प्रेम का जश्न मनाता है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत शुरू किए गए इस अभियान का उद्देश्य लोगों को तिरंगा घर लाने और भारत की आजादी के उपलक्ष्य में उसे फहराने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसकी शुरुआत इस सोच के साथ हुई थी कि राष्ट्रध्वज के साथ हमारा रिश्ता हमेशा व्यक्तिगत होने के बजाय औपचारिक और संस्थागत रहा है, इसलिए एक राष्ट्र के तौर पर सामूहिक रूप से तिरंगे को घर लाना न केवल तिरंगे के साथ व्यक्तिगत जुड़ाव का प्रतीक बन गया बल्कि राष्ट्र निर्माण के प्रति हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता का भी प्रतीक बन गया। इस पहल का मकसद लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना जगाना और भारतीय राष्ट्रध्वज के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि वंदे मातरम की भावना ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया और आज भी ये देश की पहचान को मजबूत कर रही है। संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित हर घर तिरंगा बाइक रैली में हिस्सा लेने वालों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कही।
2: इन तिरंगा यात्रा, बाइक एंड साइकिल रैलीज, कल्चरल प्रोग्राम्स एंड कॉन्सर्ट्स, ईच एक्टिविटी हैज अ डिफरेंट फॉर्म बट द सेंटीमेंट बिहाइंड देम इज कॉमन। द नेशनल फ्लैग इज द सिंबल इन व्हिच एवरी सिटीजन कैन फाइंड अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से स्वतंत्रता दिवस को सम्मान, गर्व और गौरव के साथ मनाने और विकसित भारत का संकल्प लेने का आग्रह किया। सोशल मीडिया पोस्ट में एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने लोगों से हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा अभियान के तहत हर घर में राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अपील की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज युवाओं से देश को आगे ले जाने की जिम्मेदारी उठाने और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में योगदान देने का आह्वान किया। नई दिल्ली में तिरंगा यात्रा के दौरान युवा छात्रों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने ये बात कही। जम्मू कश्मीर में आज श्रीनगर

0: संवाददाता ने बताया है कि राज्य में तिरंगा यात्राओं से लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
1: स्वतंत्रता दिवस से पहले मध्य प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान जोर पकड़ रहा है। प्रदेश में 9 से 17 अगस्त तक चल रहे इस अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में तिरंगा यात्रा के साथ की। इसके बाद से प्रदेश भर में तिरंगा यात्राएं, बाइक और साइकिल रैलियां निकाली जा रही हैं। गांवों से लेकर शहरों तक तिरंगा मेले, प्रदर्शनियां, मानव श्रृंखला और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। स्कूल कॉलेजों में भी रंगोली, चित्रकला, निबंध और देशभक्ति गीतों जैसी प्रतियोगिताओं के जरिए बच्चों और युवाओं को अभियान से जोड़ा जा रहा है। 13 से 15 अगस्त तक लोगों से अपने घरों, दुकानों और प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहराने की खास अपील की गई है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पर विचार विमर्श और पारित करने के लिए चर्चा शुरू हुई। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने ये विधेयक प्रस्तुत किया। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम 1962 में और संशोधन करना है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेलवे के लगभग 89% आरक्षित टिकट ऑनलाइन बुक किए जा रहे हैं। वर्ष 2013-14 में ये आंकड़ा लगभग 49% था। श्री वैष्णव ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। मुंबई के घाटकोपर इलाके में आज तड़के एक चौल में भूस्खलन होने से 6 लोगों की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्थानीय अधिकारियों द्वारा बचाव और राहत कार्य जोरों पर है।
2: मुंबई के घाटकोपर इलाके में आज तड़के भारी बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 6 लोगों की मौत हो गई। बृहन मुंबई महानगर पालिका के अनुसार यह घटना चिराग नगर स्थित गौसिया चौल में हुई। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक पहाड़ी का एक हिस्सा चौल पर गिर गया, जिससे 2 से 3 मकान मलबे की चपेट में आ गए। घटना के बाद मुंबई की महापौर ऋतु तावड़े और अतिरिक्त नगर आयुक्त पूर्वी उपनगर डॉक्टर अविनाश ढाकने ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और जारी बचाव कार्यों का निरीक्षण किया। प्रार्थना के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से मैं स्वीटी जैन।
0: वहीं मौसम विभाग ने राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कल तक बिजली चमकने और तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा तट के पास उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में एक नया कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण उत्तरी और तटीय ओडिशा के कुछ हिस्सों में तेज बारिश की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का एक नया क्षेत्र बना है, जिससे उड़ीसा में बारिश बढ़ गई है। भद्रक, केंद्रापड़ा और जगत सिंहपुर में भारी से बहुत भारी बारिश के लिए ऑरेंज चेतावनी जारी की गई है। 25 अन्य जिलों के लिए येलो चेतावनी जारी की गई है। IMD को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में उड़ीसा में व्यापक होगी और आज व कल कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। तटीय इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। खेलों में ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने अमेरिका में आयोजित ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता सिंगफील्ड कप के दूसरे दौर में जावुखेर सिंदारोव को हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। 95 चालों तक चले इस मैच में प्रज्ञानंदा ने शुरुआत से अंत तक अपना दबदबा बनाए रखा। इस जीत के साथ ही प्रज्ञानंदा के 2 मैचों में 1.5 अंक हो गए हैं। अभी अभी समाचार मिला है कि लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार, विपक्ष से संसद चलने देने का आग्रह। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण आज भी बाधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का युवाओं से आत्मकथा पढ़ने और रील्स तथा सोशल मीडिया की

फौजी भाइयों, प्रीत लड़ी कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी गुवाहाटी के प्राग ज्योतिषपुर से। आइए अब आपको सुनवाते हैं हरिहरन और अलका याग्निक का गाया ये युगल गीत, फिल्म है हकीकत।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: नमस्कार, आदाब एंड गुड आफ्टरनून। स्वागत करती हूं आपका, मैं यानी नाज, आपके पसंदीदा शो नाम है जिसका रेडियो डॉक्टर, जहां डिस्कस होता है आपकी सेहत से जुड़ा हर जरूरी मैटर। दोस्तों, कहावत है ना कि पहला सुख निरोगी काया, लेकिन इसके लिए क्या करें क्या ना करें ये जानना और समझना बहुत जरूरी है। कैसे सुधारें अपना बिगड़ा हुआ लाइफस्टाइल और लाएं सुधार अपने डाइट प्लान में भी, हमें तफसील से बताने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं खास मेहमान डॉक्टर टी दिवाकर राव। आज है हमारे साथ, जो कि CGHS में मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं और साथ ही आयुर्वेदिक विशेषज्ञ भी हैं। सर, थैंक्स फॉर कमिंग एंड वेलकम टू द शो।
2: नमस्कार मैडम।
1: तो आयुर्वेद में छिपे सेहत के मंत्रा को हम समझें डॉक्टर दिवाकर सर से, उससे पहले अपने लिसनर्स को याद दिला दें कि प्रोग्राम चल रहा है रेडियो डॉक्टर, जिसे आप सुनते हैं हर दोपहर 3 बजे आपके फेवरेट चैनल FM रेनबो पर। साथ ही आप हमें सुन सकते हैं प्रसार भारती की ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी। तो आपकी सेहत और आयुर्वेद से जुड़ा कोई भी सवाल अगर आपके मन में है तो बिल्कुल भी देर मत कीजिए, तुरंत कॉल कीजिए हमें। फोन नंबर्स आप डायल कीजिएगा 011-234-21080 या फिर 234-21082। साथ ही व्हाट्सएप के जरिए भी आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। मैसेज आपको इसके लिए करना है 9868170707 पर। तो सर, शुरुआत उसी बेसिक सवाल से करेंगे जो आज शायद हर किसी के मन में है, एक हेल्दी बॉडी के लिए लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन रखें, कितना बड़ा रोल है उसका और खान पान का ध्यान रखना कितना ज़रूरी है।
2: सबसे पहले तो सबका नमस्कार। इस शो में जब भी मैं आता हूँ, ये पहला

0: सवाल ही होता है. हेल्थ को आयुर्वेद में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है, क्योंकि आयुर्वेद का मतलब ही है जो रोग है उसको दूर करना, और जो हेल्दी है ऑलरेडी या हेल्दी के आसपास है
1: जी
0: उनको हेल्दी रखना, टू मेंटेन द हेल्दीनेस जिसको हम बोलते हैं. तो उसके लिए कुछ गाइडलाइंस दिया है कम से कम 3000 साल पहले.
1: जी
0: उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका आहार और विहार. आहार का मतलब है आपका फूड हैबिट्स या द वैरायटी ऑफ फूड विच यू टेक, एंड विहार का मतलब आपका रहन सहन. आप एक्सरसाइज करते हो नहीं करते हो, आप सवेरे कितने बजे उठते हो, आपका दिनचर्या क्या है, ये सब विहार में आता है. ये दोनों बेसिक इम्पॉर्टेंट पिलर्स है आपको हेल्दी रहने के लिए. फॉर एग्जांपल आप खाना ही आप देख लीजिए, साल में हमारे यहाँ 6 ऋतु होते हैं.
1: जी
0: ऋतु हर 2 महीने में एक बार आता है, हमारे यहाँ 6 ऋतु है, तो 12 महीने में ये 6 ऋतु मतलब 2 महीने में एक बार आता है. तो ये ऋतु चेंज होने के एक समय होता है. जैसे पहला ऋतु है, जैसे इससे पहले ग्रीष्म ऋतु था विच इज़ समर,
1: जी
0: अब जो है वर्षा ऋतु है विच इज़ रेनी सीजन. तो ग्रीष्म ऋतु का जो आखिरी 7 दिन, वर्षा ऋतु का पहला जो 7 दिन, ये 14 दिन हो गए. ये जनरली क्या करता है, बीमारियां पैदा करने के लिए वो एटमॉस्फेयर वो क्रिएट करते हैं, क्योंकि एक ऋतु जो है ढल रहा है धीरे धीरे, दूसरा ऋतु आ रहा है. जैसे अभी वर्षा ऋतु है, इसमें सबसे ज़्यादा गंदा क्या होगा आपका, पानी.
1: पानी
0: तो पानी से रिलेटेड जितने भी सावधानी बरतने चाहिए वो सबको ध्यान रखना चाहिए. और जनरली रेनी सीजन में या वर्षा ऋतु में आपका डाइजेशन, डाइजेस्टिव पावर होता है ना जिसको अग्नि बोला गया आयुर्वेद में,
1: जी
0: वो कम हो जाता है. मान लीजिए आपका डाइजेस्टिव पावर ही 50% हो गया, पहले 100 था, वर्षा ऋतु में वो 50 हो गया, मगर आपने खाना जो है वही 100% खा रहा है.
1: बिल्कुल
0: मतलब आप ले लीजिए 4 रोटी आप खा रहे हैं, जो आपको ग्रीष्म ऋतु में, जैसे समर में तो वो हजम हो रहा है, जैसे आपका रेनी सीजन आएगा वो आधा हो जाएगा. आप 4-5 रोटी खाएंगे तो उसका बाकी 2 रोटी पचेगा कब.
1: तो सर इसके लिए कोई फॉर्मूला आप बता सकते हैं जो आसानी से याद रखा जा सके कि किस मौसम में कितनी डाइट सही है और किस मौसम में कम कर देना चाहिए उसे?
0: इसके लिए आयुर्वेद में बहुत बढ़िया 2 चीज़ बताए, तो वेरी सिंपल है. एक होता है आदान काल, एक होता है आपको उसको क्या बोलते हैं, जो बल पैदा वो होता है एक काल में. जैसे आदान काल है, जैसे ग्रीष्म ऋतु है, इसमें क्या है, देखिए आप बाहर जाएंगे तो स्वेट निकलेगा ड्यू टू गर्मी, तो आपके जितने भी जो सॉल्ट्स हैं बॉडी के वो बाहर निकल रहा है,
1: जी
0: आप जल्दी थक जाएंगे.
1: जी
0: तो उसका रिप्लेसमेंट क्या है, सॉल्ट इनटेक और पानी और बहुत सारी चीज़ आपको करना है. जैसे आप करेंगे तो उसका साइड इफेक्ट क्या होगा, आपको भूख कम हो जाएगा. जितना
1: बिल्कुल
0: पानी पियेंगे तो भूख कम होगा. तो सबसे पहला पॉइंट यह है कि हमें बैलेंस रखना
1: जी,
0: पड़ेगा.
1: वाटर इनटेक का
0: हाँ,
1: ख्याल
0: वाटर
1: रखें।
0: इनटेक का बैलेंस रखना
1: जी
0: पड़ेगा.
1: बिल्कुल, इस पर बात आगे भी करेंगे। फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी स्वागत है आपका, अपना नाम बताइए।
2: जी
1: जी
2: नमस्कार, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
1: जी नमस्कार
0: नमस्कार जी.
2: अमित त्यागी नाम मेरा, ग्राम नंगोला आप यूपी से बात कर रहा हूँ।
1: जी
2: सर मेरा सवाल ये है कि जो खाना रखा हुआ होता है और जो ताजा होता है उसका सेहत पे क्या प्रभाव पड़ता है?
0: बहुत सही सवाल पूछा आपने अमित जी.
2: धन्यवाद।
0: देखिए ये जो ऋतु है जिसको हम वर्षा ऋतु बोलते हैं, इसमें खाना जितना फ्रेश हो खाना आप खा सकते हो वो खाना बेहतर होता है, क्योंकि इस ऋतु में मॉइस्चर बहुत होता है, तो उसमें फंगस लगने का, कुछ और इन्फेक्शन होने का चांसेस होता है. इसलिए खाना हमेशा इस ऋतु में खासकर फ्रेश लेना ही सही है.
1: जी एक और सवाल हमारे पास आया है सर, कर्नाटक से आया है ये सवाल। सागर जी ने पूछा है कि 26 साल इनकी उम्र है, सुबह उठने के बाद बहुत थकान महसूस करते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है और इसके लिए क्या करूं?
0: 26 साल की उम्र में अगर थकान है तो बाकी पैरामीटर्स उनका देखना पड़ेगा. लाइक हो सकता है इनको विटामिन डी, कैल्शियम या विटामिन B12 की कमी होगी, उसकी जांच करानी पड़ेगी.
1: जी और इसके साथ ही सर जोड़ों की सूजन को खत्म करने के लिए आयुर्वेद में क्या तरीका है? ये मेरठ उत्तर प्रदेश से अमित कुमार वर्मा जी पूछ रहे हैं।
0: वर्मा जी ने शायद उम्र नहीं
1: नहीं,
0: बताया,
1: उम्र नहीं लिखी है।
0: मैं ये सोच के चल रहा हूँ ये मिडिल एज के होंगे.
1: जी
0: तो जनरली मिडिल एज में जो आर्थराइटिस जिसको हम बोलते हैं वो 2 तरीके के होते हैं. वन इज ऑस्टियो आर्थराइटिस विच इज एज

0: रिलेटेड, और दूसरा है वो थोड़ा अलग है, इन्फेक्शन की वजह से होता है, बहुत सारे अलग अलग कारण हैं। तो हम ये मान के चलेंगे इनको एज रिलेटेड आर्थराइटिस है। तो एज रिलेटेड आर्थराइटिस के लिए महायोगराज गूगल या योगराज गूगल, दो गोली दो बार सवेरे शाम ले, ये प्रिलिमिनरी एक टाइप ऑफ ट्रीटमेंट है। इससे जनरली ठीक होता है, अगर नहीं होता है तो फिर डॉक्टर के पास जाए।
1: जी सर, एक सवाल और आया है इसी से रिलेटेड। 37 साल इनकी उम्र है, सरिता विहार से अनमोल जी लिख रहे हैं कि डेली 50 किलोमीटर साइकिल में चलाता हूँ, क्या आयुर्वेद इसे सही मानेगा?
0: ये बल के ऊपर डिपेंड करता है। सब आयुर्वेद ने ये कहा है कि हर इंडिविजुअल अलग है।
1: अच्छा,
0: कोई दो कदम चलने से थक जाता है, उसको 10 कदम नहीं चलना चाहिए, जितना वो चल सकता है उतना चले, आपके बल के हिसाब से सारा काम करे। तो उनको अगर 50 किलोमीटर चलाने में कोई दिक्कत नहीं, वो चला सकते
1: हैं। अच्छा सर, तो अगर किसी तरह की दिक्कत महसूस नहीं कर रहे हैं तो आप साइकिल चलाते रहिए। और फिलहाल वक्त हो चला है एक बहुत ही खूबसूरत गाने को सुनने का, उसके बाद लौटेंगे और फिर बात करेंगे सर से।

0: तो सर, थकान की हम बात कर रहे थे, मेंटल स्ट्रेस भी उसी से आता है। आजकल हम देख रहे हैं कि थकावट शारीरिक से ज़्यादा मानसिक रूप से लोगों को ज़्यादा परेशान कर रही है। तो इसी से जुड़ा एक और सवाल आया है हमारे पास। बलजिंदर सिंह पूछ रहे हैं, उम्र इनकी 31 साल है, 5 साल से ज़्यादा वक्त हो गया इन्हें वर्क फ्रॉम होम करते हुए, घर से बाहर कम निकल पाते हैं क्योंकि काम के बाद काफ़ी हद तक थक जाते हैं, तो अकड़न भी महसूस करते हैं शरीर में। तो पूछना चाह रहे हैं कि लाइफस्टाइल में क्या ऐड करना चाहिए या क्या चेंजेस करने चाहिए जिससे इन्हें अच्छा महसूस हो।
1: हमारे जो लिम्ब्स है ना, अपर लिम्ब्स, जैसे हाथ हैं, जैसे पैर को लोअर लिम्ब्स बोलते हैं, इसमें स्केलेटल मसल्स होते हैं। स्केलेटल मसल्स को अगर काम नहीं देंगे तो उसमें अकड़न या स्टिफनेस आ जाता है, विच इज़ वेरी कॉमन नेचुरल। और ये काफ़ी साल से, बल्कि वो घर पे है क्योंकि काम उनका ऐसा है, तो हो सकता है विटामिन डी की कमी भी हो गई। तो विटामिन डी की कमी होती है तो साथ साथ कैल्शियम की भी कमी हो सकती है। और वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन है, उन्होंने बताया नहीं, हो सकता है विटामिन B12 की कमी होगी, और भी बहुत सारी कमियाँ होंगे। तो एक बार इन चीज़ को टेस्ट कराना पड़ेगा, और सवेरे उठ के कम से कम बाहर निकले, 1 घंटा घूमें, फिर आए, फिर अपना काम कर ले, इतना टाइम तो मिलता होगा इनको।
0: जी। और सर, एक और सवाल है, उम्र है 40 साल, मोहम्मद इम्तियाज़ साहब का ये सवाल है कि ना तो बीपी है की प्रॉब्लम है इन्हें और ना ही शुगर की, लेकिन कुछ दिनों से बहुत थकान महसूस कर रहे हैं, तो क्या करें।
1: इनको बीपी शुगर नहीं है तो थकान नहीं हो सकता, ऐसा भी नहीं है। उनका वर्क रिलेटेड कोई स्ट्रेस होगा या कोई और कारण होगा, उसके लिए रूटीन ब्लड टेस्ट इनको कराने पड़ेंगे, तभी पता चलेगा क्या है।
0: जी। सर, जैसा कि डिजिटल दौर है आज का, तो स्क्रीन टाइम तो बढ़ ही रहा है, साथ ही नए नए कल्चर्स भी हम फॉलो करने लगे हैं, सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। तो बिना किसी विशेषज्ञ की सलाह के देखा गया है कि अक्सर सप्लीमेंट्स या फिर कोई भी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी की भी अगर हम बात करें, तो लोग बिना किसी सलाह के लेने लगते हैं। ये किस हद तक सही है और इसको किस तरह से मैनेज किया जाना चाहिए।
1: आप अगर अपने खाने में वो चीज़ नहीं यूज़ कर रहे जो यूज़ करना चाहिए, जो पालक से मैं शुरू करता हूँ, जैसे पालक है, बहुत लोग नहीं खाते आजकल, पहले हम लोग खाते थे। वैसे ही जो है ड्रम स्टिक्स है, ड्रम स्टिक्स भी लोग नहीं खाते हैं। और बहुत सारे लीफी वेजिटेबल्स हैं, और बहुत सारे ऐसे वेजिटेबल्स हैं जो खाना लोगों ने बंद कर दिया, तो इसलिए जो है ये सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। और ऊपर से आप रोज़ फ़ोन देखते हैं, कुछ ना कुछ आता ही रहता है, आप कितने करेंगे,
0: बिल्कुल।
1: हर रोज़ एक आता है नई चीज़। और उस सप्लीमेंट्स का क्या रिसर्च हुआ है, नहीं हुआ है, कौन सी कंपनी बना रही है, ये किसी को नहीं पता है। वो बेसिकली कमर्शियल पर्पज़ के लिए वो तैयार करते हैं, तो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा।
0: जी। प्रवीण सिंगल जी हमारे साथ फोन कॉल पर इस वक्त जुड़े हुए हैं मेरठ से। जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। हेलो, लगता है फोन डिस्कनेक्ट हो गया। सर, इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एसिडिटी और ब्लोटिंग की हम बात करते हैं, ये प्रॉब्लम भी बहुत कॉमन है आजकल। तो रसोई की तरफ अगर हम रुख करें, तो वहाँ ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो हमें आसानी से मिल सकती हैं वहाँ से, और जिनसे हम अपनी तकलीफ़ दूर भी कर सकते हैं।
1: आजकल के दौर में एसिडिटी का वैसे बहुत सारे कारण हैं। मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो कारण है दो ही है, वन इज स्ट्रेस, वेदर इट इज़ मेंटल और फिजिकल, और दूसरा जो है टाइमली नहीं खाना, आपका टाइम जो है मेंटेन नहीं हो पाता है। ये दोनों रीज़न से एसिडिटी बढ़ाने के लिए, तो एसिडिटी कम करने के लिए आपका घर ही एक फार्मेसी है, उसमें सब कुछ है। सबसे बढ़िया जो है, मैं मानता हूँ कि जैसे ये मौसम है, आप मट्ठा, पता नहीं कितने लोग जानते हैं, जो छाछ
0: छाछ।
1: होता है उसमें और थोड़ा पानी मिला के आप लेते रहिए। आप अजवाइन उसमें छोंक लगा कर भी ले सकते हैं, ये सबसे बढ़िया है। इवन कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं,
0: जी।
1: तो ये सबसे बढ़िया एक औषधि है, उसको औषधि की तरह लीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा।
0: करमपुरा दिल्ली से एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी, स्वागत है आपका, नाम बताइए अपना।
2: हाँ जी, मेरा नाम राजेंद्र है और मैं करमपुरा दिल्ली से बोल रहा हूँ।
0: जी
2: 48 वर्ष मेरी उम्र है।
0: जी,
2: तो पहले तो एंकर मैम और डॉक्टर साहब दोनों को गुड आफ्टरनून।
0: गुड
1: गुड
0: आफ्टरनून
1: आफ्टरनून जी।
2: जी, जैसा कि आपने भी थोड़ी देर पहले जिक्र किया है डॉक्टर सर कि जिसको जॉइंट प्रॉब्लम है उसको योगराज गोगल खाने चाहिए। अब मेरे को ये प्रॉब्लम 2004-5 से है, तो मैंने इसके लिए ना डॉक्टर ऑर्थो आता है एक, वो ऑयल

0: लगाया और उसी कैप्सूल भी आते करीब 500-550 की दवा थी सर ये महीने भर, तो मुझे तो इसने कहा कोई फर्क नहीं पड़ा सर। तो अभी मेरी ये प्रॉब्लम जो की तो बनी हुई है, आज 1 से 2 के बीच में रेनबो हेल्पलाइन प्रोग्राम मैंने सुना कि गुलाइटिस एप्लिशिया कोई बीमारी होती है, तो इन दोनों में मैं असमंजस से पड़ गया हूँ कि मेरे ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है या ग्लोटिस एपिलेप्सिया की बीमारी है, पता नहीं क्या है। तो इसके लिए मुझे मतलब क्या करना चाहिए, पहला सवाल मेरा ये है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि पिछले 6 महीने से मेरे लीवर के आसपास जो है ना गर्मी जलन गैस की हो रही है, तो अगर मैं एक फुल्का खाऊं तो मुझे लगता है कि मैंने 4 फुल्के खा लिए। तो पिछले एक हफ्ते से मैंने आयुर्वेदा का एक मतलब लिक्विड आता है जिसे हम ये लीवर सिरप कहते हैं, उसका सेवन कर रहा हूँ, तो उससे मुझे कुछ फर्क तो है। तो अब मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि मेरे को ये लीवर अल्सर है या फैटी लीवर की प्रॉब्लम हो गई है। तीसरा सवाल, मुझे स्किन एलर्जी है, श्वसन एलर्जी है, इसका कुछ घरेलू उपाय बताओ, अगर आपके पास आते हैं तो फिर आप क्या सजेस्ट करेंगे
1: जी। राजेंद्र जी सवाल का जवाब अब ले लीजिए।
2: इनके बेसिकली 3 सवाल है, एक आर्थराइटिस रिलेटेड है और दूसरा लिवर रिलेटेड है और तीसरा स्किन रिलेटेड है
1: जी।
2: हो सकता है ये सारे इंटर रिलेटेड हो, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि इन्होंने जो दवाई लिया है वो आर्थराइटिस के लिए लिया, तो उसके वजह से क्या पता लीवर की समस्या शुरू ना हो गया हो, उनकी वजह से स्किन की समस्या भी, क्योंकि आजकल जो दवाएं आते हैं उसके ऊपर टिप्पणी करना उचित नहीं है। तो इनका बढ़िया ये है कि आसपास जो है जो भी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, जैसे चरक आयुर्वेद संस्थान है, वहाँ ये जा सकते हैं। इनकी एक्चुअली थरो जो है चेकअप होना चाहिए और बाकी अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत भी है, ये सब होने के बाद ही पता लगेगा कि क्या बीमारी है और इलाज कैसे करना चाहिए।
1: जी बिल्कुल सर, डाइट को लेकर आजकल हर कोई कॉन्शियस है, बहुत ध्यान से सोच समझकर ही कोशिश सभी की रहती है कि खाएं। तो सर बीटरूट को लेकर एक सवाल आया है, चुकंदर को लेकर, उम्र बताई है।

0: इनके बेसिकली दो सवाल है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव है और एक बीमारी का।
1: जी
0: देखिए, गॉल ब्लैडर का सर्जरी करानी पड़ेगी, उसके लिए कोई दवाई, देसी दवाई ट्राई ना करें, क्योंकि आपका जो उसका जो साइज है बहुत बड़ा है, 70 mm विच इज़ ए ह्यूज वन, तो वो ना ट्राई करें, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे दवाई होते हैं जो आपकी बाकी लिवर भी ख़राब कर देंगे। तो दूसरी बात यह है, CGHS कार्ड है तो आप किसी भी CGHS वेलनेस सेंटर में जाके अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट दिखाइए, वो अपने आप आपको सजेस्ट करेंगे सर्जरी के लिए।
1: जी सर, आयुर्वेद के नज़रिए से हफ्ते में एक दिन फास्टिंग करना कितना फ़ायदेमंद है और इसका सही तरीका क्या होना चाहिए, मतलब क्या हम खा सकते हैं और क्या पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए?
0: ये इतना बढ़िया टॉपिक है, इस टॉपिक के ऊपर एक शायद आपको पता है कि नहीं, वो एक जापनीज एक साइंटिस्ट ने काम किया है।
1: अच्छा,
0: उनको नोबेल प्राइज मिला है।
1: वाह।
0: तो हर चीज़ के लिए रेस्ट चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: हमारे जो गट है एक तरह का इंजन है, मशीन चलती है, तो मशीन को भी रेस्ट चाहिए। उसके साथ साथ जुड़े हुए आपके लिवर है, किडनी है, बहुत सारे अलग सिस्टम से उसको रेस्ट चाहिए। तो मैं ये कहता हूँ हफ्ते में एक बार आप कर सकते हैं। आप शुरू करिए एक वक्त से, जैसे नाइट आपने नहीं खाया, संडे का रात को मत खाइए। अगर आपको अच्छा लगता है फिर नेक्स्ट 2-4 हफ्ते के बाद आप दोपहर का भी खाना छोड़ सकते हैं, मगर पूरा दिन छोड़ना उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि एसिडिटी होगी, शुरू शुरू में प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो आप एक एक वक्त छोड़ के आप ट्राई कर सकते हैं, वो बहुत अच्छी चीज़ है।
1: जी सर, बातचीत का जो सिलसिला है उसे इसी तरह से जारी रखेंगे, फिलहाल एक अच्छा सा गाना सुन लेते हैं।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: जी बिल्कुल, मैं हूं आपके साथ नाज और आप सुन रहे हैं रेडियो डॉक्टर, जहां बात हो रही है आपकी सेहत की और सेहत से जुड़ी परेशानियों की भी। आयुर्वेदिक खान पान और जीवन शैली पर आज हम बात कर रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर टी दिवाकर राव सर, जाने माने आयुर्वेदिक विशेषज्ञ हैं और CGHS में CMO यानी मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं। तो सर, बातचीत आगे बढ़ाएं उससे पहले एक कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो।
2: हेलो
1: जी।
2: हेलो, मैं मेरठ से बोल रहा
1: हूं। जी, आपका नाम बताइए प्लीज।
2: जी, मेरा नाम सन।
1: आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, थोड़ा सा आप अगर नेटवर्क में आ जाएंगे तो आसानी हो जाएगी।
2: आ रही है अब आवाज?
1: हाँ जी, हाँ जी, बताएं।
2: जी, मेरा प्रश्न ये है कि रात को ना मेरी मम्मी जी के जो पैर की नस है अचानक से खड़ी हो गई थी।
1: ओके,
2: ऐसा क्यों होगा?
1: पैरों की नसों में कुछ प्रॉब्लम बता रहे हैं, रात में अचानक से अकड़ गई है शायद, ऐसा कुछ कहें।
3: मैडम की उम्र तो नहीं बताई होगी। वैसे इसमें जनरली जो है ये जो थकावट होती है लोगों को, तो मसल्स के अंदर जो है जो इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह है वो कम हो जाते हैं, तो अचानक जो है पिंडली पकड़ना बोलते हैं ये लोग, उसके लिए जो है कोई भी घर पे अगर मसाज वाला तेल है उसको लगाए और थोड़ा सा सॉल्ट और इलेक्ट्रोलाइट्स का पानी लेते रहे, वो उससे छुटकारा मिलेगा उसे।
1: जी, इसके साथ ही सर एक और सवाल आया है गुजरात से, ज्योति पूछ रही हैं कि 72 kg 72 किलो इनका वजन है, शुगर बंद कर दी है, फ्राइड फूड भी नहीं लेती हैं, डेली 20 सूर्य नमस्कार भी करती हैं, फिर भी वेट कम नहीं हो रहा है, कोई बीमारी तो नहीं है?
3: 20 सूर्य नमस्कार करना ही बहुत बड़ी बात है।
1: जी बिल्कुल।
3: और वेट कम नहीं हो रहा है और शुगर चीज़ें जो बंद कर दी मैडम, हो सकता है इनको कुछ और टेस्ट कराने पड़ेंगे, एक बार थायराइड का टेस्ट करा ले उसके बाद फिर संपर्क करें।
1: बिल्कुल। अलका जी का भी एक सवाल है, दिल्ली से है और उम्र है 46 साल, रिपोर्ट्स बता रही हैं इनकी कि स्लाइटली एनिमिक हैं और एज अ वेजिटेरियन कौन से फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स इन्हें अपनी डाइट में शामिल करने चाहिए?
3: ड्राई फ्रूट्स जितने भी है, डेट्स वगैरह अच्छा है, इवन ड्रम स्टिक्स मैंने कहा वो अच्छा है, पालक भी अच्छा है, ये ले सकते हैं, इसी से बहुत हद तक सही हो जाए, ड्रम स्टिक्स जरूर ले।
1: जी, बढ़ता वजन सर एक बहुत ही बड़ी परेशानी है जिससे लोग आजकल परेशान हैं, तो बहुत जल्दी रिजल्ट्स चाहिए सबको, तो क्रैश डाइट का कल्चर बहुत बढ़ रहा है, मतलब कैलोरीज इंटेक बहुत तेजी से कम कर देते हैं, तो आयुर्वेद इसे सही मानेगा या गलत?
3: बिल्कुल नहीं मानेगा।
1: जी,
3: पहली बात तो यह है कि सीधा सीधा मैं नकारता हूँ। देखिए, हमारा जो सिस्टम है ना, एक पर्टिकुलर बायोलॉजिकल क्लॉक हम बोलते हैं, उससे चलती है, क्रैश कोर्स से नहीं चलती है, क्योंकि आपको हर दिन कुछ अमाउंट में प्रोटीन चाहिए, कुछ अमाउंट में आपको कार्बोहाइड्रेट्स तो जो डेली वर्क करने के लिए चाहिए, और कुछ स्टोरेज के लिए फैट भी चाहिए, ये तीनों जरूरी है। आप ऐसा नहीं कि किसी एक को बंद कर दिया या बिल्कुल खाना ही बंद कर दिया, तो बॉडी का जो है ना नेगेटिव

0: रिएक्शंस शुरू होते हैं. फॉर एग्जांपल आपने खाना ही बंद कर दिया तो सबसे पहले स्टमक में ही आपको परेशानी शुरू हो जाएगी, एसिडिटी शुरू होगी. उसके साथ साथ आप भूख ना लगने का एक कारण भी आप ढूंढेंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे तो उससे और एक प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी. तो ये विशेष साइकिल होगा. तो इसको जितना हो सके अवॉइड करें. जो रूटीन है वो हमारा रूटीन सही है. रूटीन क्या है? टाइमली खाना और नियमित रूप से और जितना जरूरी है आपको उतना ही खाना.
1: जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं मेरठ से. जी, स्वागत है आपका, अपना नाम बताइए.
2: अस्सलाम वालेकुम.
1: जी वालेकुम अस्सलाम. जी बताइए, सवाल पूछिए.
2: कस्बा किठौर जिला मेरठ से. जी
1: जी
2: सर, तो हमारे जो हैं घर से उनके गुर्दों में पथरी आई है, दोनों गुर्दों में 8-8 mm.
1: जी
2: सर, उसके बारे में ही पूछना था जी, आयुर्वेद में क्या है इसके बारे में कुछ.
0: नहीं देखिए, 0-5 mm एंड 5-10 mm, ये 10-15 mm तो वो सर्जिकल हो जाएगा. 0-5 एंड 5-10, 0 मतलब 1-5 आप मान लीजिए. तो इसमें ये लोग ट्राई कर सकते हैं दवाई. और मगर एक ही चीज़ है, वो कहाँ पर है वो डिपेंड करता है कि किडनी के किस जगह पर है किडनी में. अगर मान लीजिए वो नीचे है किडनी के तो वो फ्लश आउट नहीं होगा. अगर ऊपर है वो तो गिरने का चांस है. चंद्र प्रभावटी ले सकते हैं.
1: जी सर, इसी के साथ मैं आपसे अब जानना चाहूँगी कि हम इससे पहले बात कर रहे थे क्रैश डाइट की. आपने बताया कि कैलोरीज इनटेक को एकदम से कम नहीं करना चाहिए. तो सर, ये कैसे मालूम हो कि कितनी कैलोरीज किस वजन वाले के लिए सही हैं? अगर हाँ, वजन कम करना है तो उसमें कितनी कटौती जायज है?
0: देखिए, जो एवरेज इंडिविजुअल है उसको 1500 से 2000 किलो कैलोरी तो मिनिमम चाहिए. जो आपके रूटीन एक्टिविटी जो एक्सरसाइज करते हैं चलते हैं तो उनको थोड़ा 500 और जाता है, मतलब 2500 तक जाता है. तो मान लीजिए किसी को 1500 और 2000 के बीच में है उनका इनटेक, अगर वो कम करना चाहता है तो वो 1200 तक या 1500 तक ला सकते हैं, वो 500 तक नहीं ला सकता. फॉर एग्जाम्पल, दो रोटी सब्जी दोपहर में और दो रोटी सब्जी शाम को, वो आपको 10 से 1000-1200 आपको अमाउंट होगा. अब ब्रेकफास्ट आप 200-300 और जोड़ लीजिए तो वो बन रहा है 1500. वो आपके रूटीन एक्टिविटी में ही वो निकल जाएगा. अब उसको भी आप कम करेंगे आपको थकावट होगी.
1: जी, और उसको फिर लॉन्ग टर्म ले जाना भी मुश्किल
0: होगा.
1: जी सर, इसी के साथ डिनर स्किप करने का भी बहुत कल्चर है आजकल, इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
0: डिनर एक्चुअली स्किप मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगा. डिनर आप अर्ली करिए, मतलब जनरली लोग 10 बजे 11 बजे खाने की आदत है दिल्ली में, आपने देखा होगा. क्योंकि लोग पहुँचते ही जो 9:30 to 6 वाले हैं 8 बजे पहुँचते हैं, फिर चाय वाय पीते हैं, फिर कुछ टीवी देखते हैं, फिर 10-11 बजे खाना खाते हैं, वो ना खाए. उससे अच्छा है जब भी आप घर पहुँचेंगे तो आप लाइट खाना लीजिए, चाहे एक रोटी लीजिए. लाइट फूड इज ऑलवेज एडवाइजेबल.
1: जी, और सर बिजी शेड्यूल की हम अभी बात कर रहे थे, एक कॉलर ने भी हमसे पूछा था कि उसमें क्या होता है जब शेड्यूल बहुत बिजी हो जाता है तो हम खाना बनाने के लिए और उसे खाने के लिए भी टाइम नहीं निकाल पाते हैं. तो आयुर्वेद हमें क्या उपाय देता है? ऐसी कौन सी डाइट्स हैं, कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे हम कम समय में एक अच्छी डाइट को तैयार भी कर सकते हैं और ले भी सकते हैं?
0: सवेरे आप महाराजा की तरह खाइए, आयुर्वेद यही कहता है. सवेरे जितना हो सके आप ज़्यादा लीजिए, दोपहर में उससे भी कम और रात को बिल्कुल कम लीजिए. तो सवेरे आप अगर रोटी भी लेते हैं, दो लेते हैं तो उसकी जगह 4 लीजिए. और घी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, घी लगा सकते हैं सवेरे, क्योंकि आप दिन भर काम करते हैं, दोपहर में आपका खाना बन नहीं पा रहा है. तो आप उससे आप थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर सकते हैं. मगर मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि बिल्कुल ना खाए. नियमित रूप से 2-3 बार आप खाना ही पड़ेगा आपको.
1: जी, तो रेडी टू ईट वाले ऑप्शंस पर ना जाएं.
0: हाँ,
1: ताजे सैलेड्स को यूज कर सकते हैं. एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं. जी हेलो.
3: नमस्कार डॉक्टर.
1: नमस्कार सर, कहाँ से बात कर रहे
3: हैं? मैं पालन से बात कर रहा हूँ.
1: जी अपना नाम बताइए.
3: कृष्ण लाल.
1: जी अपना सवाल पूछिए सर.
3: मेरा सवाल ये है कि मुझे रात को 3-5 बार इंजेक्शन के लिए उठना पड़ता है.
1: जी,
3: नींद खुल जाती है, मूड ड्राई हो जाता है.
1: सर उम्र कितनी होगी आपकी?
3: मैं 70.
1: अच्छा जी सर.
3: तो सुबह और रात को उठना पड़ता है और एक ये सांस लेटने के बाद सांस मतलब चलता खांसी बहुत आने लगती है. ये तो काम आएगी। और खाना मैं रात को शाम के टाइम

0: रात खूब लेता हूँ चुकंदर टमाटर गाजर का और खिचड़ी खाता हूँ रात में और एक रोटी।
1: सर क्या शुगर की प्रॉब्लम है आपको?
0: शुगर की खाली पेट तो मेरा 107 होता है और खाने के बाद 180 हो जाता है
1: जी।
2: उनको शुगर की समस्या कह रहे हैं वैसा है और रात को उठते 3-4 बार ये कह रहे हैं ना। हो सकता है इनको प्रोस्टेट का भी समस्या हो क्योंकि इस उम्र में प्रोस्टेट बढ़ता है। तो प्रोस्टेट क्या करता है वो पेशाब को जो है ना पूरा एवैक्यूएट नहीं हो पाता है तो थोड़ा जा रह जाता है फिर वो इरिटेट करता है फिर दोबारा उठ के फिर जाते हैं। तो इसको ठीक करने के लिए या तो उसका वेट कराना पड़ेगा, वेट कितना है वो देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से इलाज शुरू होगी
1: जी। एक और सवाल आया है हमारे पास नीदरलैंड से आया है रविंद्र पाठक, आशा पाठक जी का। बता रहे हैं कि डायबिटीज़ और थायराइड की प्रॉब्लम है, एज है 61 और वेट है 49, तो क्या ये वेट ठीक है या नहीं? इसके लिए शायद इन्हें हाइट भी बतानी चाहिए थी, बट सर क्या सजेस्ट करेंगे?
2: जैसे वैसे लग रहा है कि अंडरवेट ही होंगे। अंडरवेट है तो ये थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए क्योंकि शुगर भी है और एक बताया क्या थायराइड भी है तो वो हाइपो है कि हाइपर है वो पहले पता लगाना ज़रूरी है। हो सकता है हाइपर हो इनको तब वेट कम होता है उसमें भी, अगर शुगर के कुछ कंडीशंस में भी वेट कम होता है तो इसकी जांच होनी चाहिए।
1: जी सर एक और सवाल है रणबीर कुमार जी जमशेदपुर से पूछ रहे हैं कि इनके भाई के लिए ये पूछना चाह रहे हैं, 33 साल उम्र है और डॉक्टर ने जाँच के बाद बताया है कि यूरिनरी ब्लैडर काम नहीं कर रहा है, ब्लैडर में एक पाउच एक्स्ट्रा बन गया है तो यूरिन डिस्चार्ज में भी दिक्कत आ रही है, तो इसके लिए आयुर्वेद क्या कुछ राय देता है?
2: ये मुझे लगता है सर्जिकल की तरफ जा रहा है तो इनको सर्जरी में ही दिखाना ठीक रहेगा।
1: जी ड्रमस्टिक्स ना मिलें तो सहजन की पत्तियां क्या इफेक्टिव होंगी?
2: बहुत सवाल अच्छा सवाल किया है। बिल्कुल ये साउथ में खाते हैं यहाँ भी खाते हैं, पत्ते खा सकते हैं ड्रमस्टिक की सहजन।
1: जी तो सर सहजन की तरह और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी सब्जियां हैं या कौन सी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिन्हें हम अपनी डाइट में शामिल कर लेने भर से ही फ़ायदा पा सकते हैं?
2: चौलाई बहुत लोग नहीं खाते हैं, चौलाई एक अच्छी चीज़ है, यहाँ मैंने कम देखा है, साउथ में खाते हैं, चौलाई एक अच्छी चीज़ है, पालक बढ़िया चीज़ है, जो भी सीजनल आपको मिल रहा है वह सब खा सकते हैं।
1: जी बिल्कुल सर आगे बढ़ें और उससे पहले एक अच्छा सा गाना सुन लेते हैं। आपसे पूछना चाहेंगे सर कोई पसंदीदा गाना हो आपका, ज़रूर हम सुनेंगे उसे।
2: हाँ बहुत सारे गाने हैं मगर मुझे एक गाना बहुत पसंद है जो शैलेंद्र जी ने लिखा है जिसको हम कविराज भी बोलते हैं, ये शायद अनाडी मूवी का है, सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी,
1: बहुत ही खूबसूरत गाना है।
2: हाँ तो शंकर जयकिशन जी के वो म्यूज़िक है
1: जी।

0: दिल्ली से एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, किशन लाल इनका नाम है। और जी हेलो, लगता है फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। अगला सवाल ले लेते हैं। आनंद सिंह जी पूछ रहे हैं, 30 साल इनकी उम्र है और 76 किलो इनका वजन है, पूरा दिन सुस्ती और कमजोरी महसूस करते हैं। श्रावस्ती यूपी से इन्होंने ये सवाल भेजा है।
1: 30 साल उम्र है,
0: 76 वजन है।
1: हाइट लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं, हाइट थोड़ा सा हायर साइड लग रहा है मुझे, 76 में भी लिखा नहीं है, तो इनको जनरली क्या है, रूटीन टेस्ट में ये पता लगेगा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, और उन्होंने ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन हमें दिया नहीं है तो कहना मुश्किल है।
0: जी सर, आहार की हम बात कर रहे थे, तो विरुद्ध आहार, रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशंस, इसकी परिभाषा आयुर्वेद में किस तरह से दी गई है, और जाने अनजाने में हम ऐसे कौन से फूड आइटम्स को एक साथ खा लेते हैं जो हमें नुकसान देते हैं?
1: एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताऊंगा कि शायद पूरे जितने भी जो वर्ल्ड के मेडिकल सिस्टम्स है उसमें शायद आयुर्वेद में ही सबसे एक्सटेंसिवली मैं कह सकता हूँ विरुद्ध आहार के बारे में बताया था। उन्होंने उसके पीछे कारण क्या हो सकता है, क्या बीमारियाँ हो सकती है और क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं वो भी बताया। फॉर एग्ज़ाम्पल, मछली के साथ दूध जो लोगों में लोग नहीं खाते हैं, अंडे के साथ भिंडी लोग खाते हैं, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, वो जनरली नहीं खाते,
0: नहीं खाना चाहिए।
1: हाँ नहीं, नहीं खाते भी है और खाना भी नहीं चाहिए। और गरम और ठंडे चीज़ लाइक गुलाब जामुन और आइसक्रीम लोग खाते हैं आजकल। जो इसका बेसिक मीनिंग क्या है, जो एक्सट्रीम्स होते हैं ना, एक्सट्रीम्स को आप कभी एक साथ नहीं लेना चाहिए, उससे कुछ ना कुछ नुकसान होता है, ज़्यादातर स्किन डिसीजेस होंगे और कुछ अलग लिवर किडनी और भी बहुत सारी बीमारियाँ होने का संभावना है।
0: जी सर, किस तरह की बीमारियाँ या किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है अगर विरुद्ध आहार हमारी डाइट में है?
1: सबसे पहले तो डाइजेशन में ही असर पड़ेगा, क्योंकि वो डाइजेस्ट तो होते नहीं है जनरली। अगर डाइजेशन नहीं होगा तो डाइजेशन से ही 100 बीमारियाँ पैदा होते हैं। आपका एसिडिटी शुरू हो जाएगा, फिर ब्लोटिंग होगा, उसके बाद आपको स्ट्रेस बढ़ेगा, वो अगर डाइजेशन ठीक नहीं है तो आपका लिवर के कुछ पार्ट्स खराब हो जाएंगे, वो एंजाइम्स नहीं बनेंगे, तो ये सब विशेष साइकिल बनेगा।
0: जी सतीश कुमार जी ने एक सवाल भेजा है, उम्र है 64 साल और वजन है 91 किलो। रोहिणी दिल्ली से भेजा है सवाल कि कमर में दर्द महसूस करते हैं, MRI करवा रखा है और डिस्क बल्ज बताया है, नस भी दबी हुई है, क्या सजेस्ट करेंगे सर?
1: ये इसमें जनरली क्या है, जब ओवरवेट होता है तो एक्चुअली एब्डोमेन बल्ज होता है, जैसे एब्डोमेन बाहर की तरफ पुल करेगा आपका जो स्पाइनल कार्ड के ऊपर जो नॉर्मल कर्वेचर है वो डिविएट हो जाएगा। जैसे डिविएट होगा दो बोन्स के बीच में एक कार्टिलेज होता है, जैसे कान होता है हमारा, उसका जो टेक्सचर आपने देखा मुलायम होता है, वैसे एक कार्टिलेज होता है उसको डिस्क बोलते हैं, वो उस एरिया से क्योंकि कर्वेचर बदल गया तो वो बाहर आ जाएगा, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और उसके वजह से सूजन होगा, फिर उसके बाद आपका नस में भी वो प्रॉब्लम शुरू होगी। तो उसके लिए आयुर्वेद ट्रीटमेंट वो करा सकते हैं, कुछ पंचकर्मा टेक्निक्स हैं, वो कोई भी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है इधर सरिता विहार में, उधर खेड़ा डाबर में एक चरक हॉस्पिटल है दिल्ली गवर्नमेंट का, वहाँ जाके करा सकते हैं।
0: जी एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, हेलो जी, अपना नाम बताइए और कहाँ से।

0: से बोल रहा हूँ।
1: जी अपना सवाल पूछिए।
0: हाँ, मुझे पूछना है कि वर्षा ऋतु चल रही है
1: जी
0: तो वर्षा ऋतु में क्या आहार विहार होना चाहिए, मतलब क्या ना खाना चाहिए, कृपया विस्तार से बताएं। धन्यवाद।
2: जी अच्छा अच्छा सवाल है। वर्षा ऋतु में सबसे पहला जो है फ्रेश फूड और जो गर्म खाना है वो खाना चाहिए, और दूसरी बात यह है स्टेल फूड, जो रखा गया खाना या रात को फ्रिज में जो रखते हम लोग उसका सेवन नहीं करना चाहिए, और बहुत देर से बाहर रखा हुआ खाना भी नहीं खाना चाहिए।
1: अच्छा, फ्लैट

0: में है, तो आयुर्वेद इस बारे में क्या कहता है?
1: इस बारे में आयुर्वेद ने कभी नहीं कहा, वो हमेशा संतुलित आहार ही कहा है
0: जी
1: जिसमें आपका फैट्स भी हो, कार्बोहाइड्रेट्स भी हो और प्रोटीन की मात्रा भी हो। प्रोटीन आपको बेसिकली जो वेजिटेरियन हो तो दाल में मिलते ही हैं, नॉन वेजिटेरियन है तो नॉन वेजिटेरियन आइटम्स हैं बहुत सारे, और उसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट्स का भी इस्तेमाल करना है, ऐसा नहीं कि एक छोड़ दिया एक खाना है।
0: जी एक कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। हेलो, दोबारा कोशिश करेंगे। और सर, अगला सवाल जुड़ा है वाटर इनटेक से। हमने बात की कि कितना ज़रूरी है वाटर इनटेक, लेकिन कितना, कब और किस तरह से उसको हमें लेना चाहिए?
1: ये बहुत बढ़िया सवाल है। मैं एक एग्जांपल बताऊंगा, एक मेरे यहाँ पड़ोसी है, वो सवेरे उठते हैं 2 लीटर पानी पहले पीते हैं, उसके बाद ही सारा काम करते हैं। वो कहते हैं कि मुझे कमज़ोरी है। उस मैंने जो बोला उसी में उसका आंसर है, 2 लीटर आप पानी पियेंगे उसके साथ साथ आपके जो बॉडी के अंदर जो सॉल्ट्स है वो बॉडी के अंदर होना चाहिए, वो बाहर निकल गए। तो उसका मतलब यह है कि आप पानी पीजिए विथ रेगुलर इंटरवल्स, जैसे आपने 1 ग्लास इज 250 ml होता है उसमें, 200 से 250 आपने एक बार पिया, फिर 2 घंटे के बाद लीजिए, फिर उसके 2 घंटे के बाद लीजिए, और जब ज़रूरी है तब उसको थोड़ा बहुत ज़्यादा लीजिए, जब ज़रूरी नहीं है उसको कम कर दीजिए। जैसे विंटर्स में कम ज़रूरत पड़ती है, समर्स में और ये बारिश में ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो 2 से 2.5 लीटर आप पी सकते हैं, मगर इकट्ठा नहीं, एक साथ नहीं पीजिए, उसको इंटरवल्स में लीजिए।
0: सर, स्किन से रिलेटेड एक सवाल आया है। इनकी वाइफ हैं राज रानी जी, इनका नाम है, एज 68 साल बता रहे हैं। रोहिणी से सवाल है कि नोज़ पर एक निशान हुआ था और हार्पिस कोई बीमारी इन्हें डायग्नोस हुई है, तो इसका कोई इलाज है?
1: हर्पिस एक वायरल डिसीज़ है जिसमें आपको नोज़ में, उन्होंने बताया नहीं कहाँ से कहाँ तक हो, जनरली एक पैटर्न होता है जो नीचे नस होता है वो फॉलो करता है, वो सीवियर पेन होता है उस समय। अब तो पेन नहीं रहा होगा, अब तो पेन नहीं रहा होगा, उनको ये कह सकते हैं बहुत सारे आयुर्वेदिक ऑयल्स हैं जो लगाने से उसमें अगर कोई डिस्कलरेशन हुआ है वो हट सकता है, मगर जो हर्पिस है वो शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए आया होगा और निकल भी गया होगा।
0: ओके सर, बालों की देखभाल कैसे करें? आयुर्वेद इसके लिए क्या सुझाव देता है? शिव जी का सवाल है ये, मेरठ से।
1: बालों के लिए सबसे पहला जो है, खाने में ही तेल बहुत सारे हैं जो नेचुरल तेल होते हैं, सर पे लगाने से, तेल लगाने से अगर अगर बाल उगते तो सबके पास बाल होना चाहिए था। तो आप जितने भी डाइट है वो सप्लीमेंट्रीज आपके खाने में ही है, फॉर एग्जांपल आप ड्राई फ्रूट्स लेते हैं, ड्राई फ्रूट्स में बहुत सारे चीज़ें हैं जो आपको चाहिए वो आप खा सकते हैं, बहुत सारे लीफी वेजिटेबल्स है वो लीजिए, घी लीजिए, दूध आप ले सकते हैं, अश्वगंधा एक चूर्ण है आयुर्वेद का वो ले सकते हैं, ये सब करने से बाल की जो हेल्दीनेस है वो बरकरार रहेगा, तेल लगाने से नहीं रहेगा।
0: बिल्कुल सर, आयुर्वेद की बताई कुछ जड़ी बूटियां भी अब आपसे जानना चाहेंगे, जिनके रोजमर्रा सेवन से हम कई मौसमी बीमारियों से बच सकते हैं, या अगर वेट मैनेजमेंट की भी बात करें, डायबिटीज़ की बात करें, तो एक कुछ कॉमन ऐसी चीज़ें ज़रूर आपसे जानना चाहेंगे जिन्हें हमें अपनी डाइट में शामिल करना ही चाहिए।
1: इस ऋतु के लिए मैं बताऊंगा, जिसको डाइजेशन के प्रॉब्लम है, एक मेडिसिन आती है हरड़,
0: जी
1: हरड़ का चूर्ण आता है जिसको हरित की बोलते हैं, वो चुटकी भर आप एक बार लीजिए दिन में, आपका डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स इस ऋतु में, 2 महीने के जो भी है अभी अगस्त में ख़त्म ही हो जाएगा, वो बढ़िया चीज़ है। बाकी अश्वगंधा एक रूट है बेसिकली, वो आप दूध से आप ले सकते हैं, जिसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है वो त्रिफला चूर्ण 1 से 3 3 ग्राम ले सकते हैं, एक शंखपुष्प भी है जिनको नींद की प्रॉब्लम है वो शंखपुष्प भी एज ए सिरप आती है वो ले सकते हैं, ब्राह्मी है वो भी ले सकते हैं, ये सारे रेगुलरली इजीली अवेलेबल मेडिसिन से हर जगह मिल जाएंगे।
0: जी बिल्कुल। चाय कॉफ़ी की आदत से भी सर ज़्यादातर लोग परेशान हैं, तो आयुर्वेद इसका क्या रिप्लेसमेंट बताता है हमें?
1: आयुर्वेद चाय और कॉफ़ी के बारे में जिक्र तो मेरे हिसाब से नहीं किया होगा, बाकी जो डिकॉक्शंस के रूप में बहुत सारे दवाई या दवाई जैसे दिखने वाले दवाई चीज़ें बताए, फॉर एग्जांपल जैसे अभी गर्मी का वो एक षडंग पानी करके, ये आपको आप गूगल करेंगे तो मिल जाएगा। षडंग पानी एक पाउडर है।

0: इसमें आप एक चम्मच उसको थोड़ा सा गर्म पानी में डाल के उबाल के वो लीजिए, वो आपको रिफ्रेशिंग बिल्कुल लगेगा। ये हर जगह मिल जाएगा इस मौसम के लिए। बाकी विंटर्स के लिए बहुत सारे ऐसे मेडिसिन्स हैं, वो मेडिसिन के रूप में ही लेना चाहिए, उसको रूटीनली ना लें।
1: सरोज मल्होत्रा जी साकेत मेरठ से लिख रही हैं कि डॉक्टर सर, मेरी एज 70 है, 70 साल है, शुगर फास्टिंग में रहती है, 130, क्या ये ज़्यादा है? कितनी होनी चाहिए और कितना परहेज़ करना चाहिए इन्हें इस स्थिति में?
0: इसके साथ साथ अगर वो पोस्ट प्रांडियल पीपीबी अगर मैडम लिखती तो थोड़ा समझने में अच्छा रहता। 130 बहुत ज़्यादा नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना आपने जो भी एक्सरसाइज कर रहा है या खाने में जो भी आपने प्रिवेंटिव मेजर्स ले रहे हैं वो लेते रहिए, और थोड़ा चलने की कोशिश करें अगर हो सके तो।
1: जी सर, खास तौर पर अगर शुगर की हम बात कर रहे हैं, डायबिटीज़ की अगर हम बात कर रहे हैं, तो लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि चीनी का ऑप्शन क्या लें। कुछ लोग गुड़ को प्रेफर करने लगते हैं, धागे वाली मिश्री को प्रेफर करने लगते हैं, तो इस बारे में क्या कहेंगे? और सर, शुगर का जो ये है, पॉइंट्स हैं, जो शुगर का मेजरमेंट है, वो कहाँ तक नॉर्मल है और किससे ऊपर घबराने की ज़रूरत है?
0: जनरली क्या है, शुगर में हम लोग दो चीज़ देखते हैं नॉर्मली। वो एक है जो खाने से पहले, खाली पेट जिसको बोलते हैं, और खाना खाने के बाद पोस्ट प्रांडियल जिसको बोलते हैं। एक होता है फास्टिंग खाने से पहले और पोस्ट प्रांडियल। ये फास्टिंग जो है 100 के आसपास, 110 मैक्सिमम इसके आसपास होना चाहिए, और जो पोस्ट प्रांडियल है वो 140 के करीब होना चाहिए। मगर ये सही पैरामीटर नहीं है। इसमें HbA1c करके एक टेस्ट होता है, वो आपको वैल्यू बताएगा 3 महीने का एवरेज। साथ साथ उसको भी कराना ठीक रहेगा, क्योंकि ये एक दिन का आपका जो शुगर वैल्यू है वो बताता है। बाकी जो HbA1c है वो आपको पूरे 3 महीने का क्या एवरेज है वो बताता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है HbA1c, आपको एवरेज देखना है कि वो कितना है। जनरली वो 5.5 के आसपास है तो ठीक है, उससे ऊपर 6 से अगर ऊपर जाता है तो आपको ध्यान रखना
1: तो फिर
0: चाहिए।
1: शुगरी आइटम पूरी तरह से बंद करने की ज़रूरत है, चाहे
0: शुगरी
1: वो।
0: आइटम पूरी तरह कभी बंद नहीं करना चाहिए, कभी
1: अच्छा।
0: भी बंद नहीं करना चाहिए। हमारे बॉडी के लिए शुगर चाहिए, थोड़ा बहुत शुगर ले सकते हैं, बाकी चीज़ें ज़्यादा ना ले। जो बहुत सारी चीज़ों में शुगर होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने गुड़ का भी, अब ऐसा नहीं कि गुड़ आपने ज़्यादा खा लिया तो शुगर सही रहेगा, ऐसा भी नहीं है। जो उसको एक लिमिट तक ही लेना चाहिए, और शुगर बिल्कुल बंद करना भी बहुत आपको नुकसान पहुंचाएगा।
1: जी बिल्कुल, बस रिफाइंड फॉर्म में ना हो,
0: हाँ, रिफंड
1: उसका ध्यान रखें। तो सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इस जानकारी के लिए, और बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। उम्मीद है सभी लिसनर्स को भी आपकी इस जानकारी से फ़ायदा होगा। और दोस्तों, इसी के साथ आज की रेडियो डॉक्टर की कड़ी को हमें यहीं पर समेटना होगा और आपसे कहना होगा अलविदा। अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, सेहत के लिए लापरवाह मत बनिए, ज़रूरी जानकारी को अपने साथ रखिए और खुश होने के साथ साथ स्वस्थ भी रहिए।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो, प्रस्तुत है इस घंटे के मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष से संसद चलने देने का आग्रह किया। लोकसभा ने आज विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को विचार विमर्श के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में और संशोधन करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का युवाओं से आत्मकथा पढ़ने और रील्स तथा सोशल मीडिया की शॉर्टकट संस्कृति से बचने का आग्रह किया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर का अनाथ और विधवा उपकर लगाया। इस राशि को अनाथ बच्चों और विधवाओं के लिए चल रही कल्याणकारी योजनाओं पर लगाया जाएगा। सरकार ने उस भ्रामक आयकर नोटिस का खंडन किया है जिसमें प्राप्तकर्ताओं से देय कर राशि के हिस्से में के रूप में 6,000 रुपए का भुगतान करने को कहा गया है। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में उत्साह। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, वंदे मातरम की भावना देश की पहचान को मजबूत कर रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज युवाओं से देश को आगे ले जाने की जिम्मेदारी उठाने और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में योगदान देने का आह्वान किया। विश्व हाथी दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि विशालकाय हाथी भारत की पारिस्थितिक विरासत का अभिन्न हिस्सा है। राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश का अलर्ट। और ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता सिंक फील्ड कप के दूसरे दौर में जावोखिर सिंदारोव को हराकर पहली जीत दर्ज की। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: कोयल सी तेरी बोली तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
6: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
1: आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6 दिल से दिल तक।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो, प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम।
3: दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय दिशा फाउंडेशन।
4: जी हाँ, हम फिर हाजिर हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो पर लेकर प्रायोजित कार्यक्रम दिशा। मैं हूँ एसआर यानी संतोष राव।

0: जी हाँ, आज के जमाने में जब युवा कोई निर्णय लेता है तो वो इस बात की परवाह नहीं करता कि उसके माँ बाप क्या सोचेंगे या उनके घर वालों का व्यवहार कैसा होगा। जी हाँ, एक तरफ अपनी ही धुन में आगे बढ़ता हुआ युवा तो दूसरी ओर परंपराओं और रूढ़िवादी सोच का मान रखते हुए बुजुर्ग आपस में इस कदर उलझ कर रह जाते हैं, जहाँ रिश्तों की कड़ी धीरे धीरे टूटने लगती है। दोस्तों, आज के दिशा प्रोग्राम में आइए बात करते हैं इसी विषय पर लेखिका और काउंसलर विनीता शॉ से। विनीता जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू संतोष।
0: विनीता जी, आज के परिवेश में जिस तरह से बुजुर्ग और युवाओं की सोच आपस में टकरा रही है, बिना ये सोचे कि उसका अंजाम क्या होगा, जब आप ऐसा देखती हैं या पढ़ती हैं तो क्या रिएक्शन रहता है आपका?
1: मैं तो हक्की बक्की रह गई। कुछ समय पहले मैंने एक ही समाचार पत्र में दो समाचार पढ़े। एक था कि एक किशोर अवस्था की लड़की, कुछ 16-17 साल की रही होगी, उसका अपने पड़ोस के लड़के के साथ लव अफेयर हुआ और वो प्रेग्नेंट हो गई, गर्भवती हो गई, और जैसे ही उसके पिता को पता लगा वो उनको ले गए, अपनी बेटी को ले गए और उसको पानी में डुबा दिया
0: जी।
1: और ये बताया कि उस लड़की ने आत्महत्या कर ली। दूसरी समाचार जो मैंने पढ़ी वो ये थी कि एक लड़की, वो भी किशोर अवस्था की, वो सोशल मीडिया पे जाकर उसने इंस्टा अकाउंट पर किसी लड़के से दोस्ती करी और बिना अपने माता पिता को बताए चुपके से बहाना करके वो मिलने चली गई। उस आदमी ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया, दुष्कर्म किया, उसको बहुत दिनों तक एक बंद कमरे में रखा, उसके साथ हिंसा करी
0: जी।
1: तो ये दोनों न्यूज़, ये दोनों समाचार ने मेरे को इसलिए आकर्षित किया क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि दिशा फाउंडेशन का हमेशा यही प्रयास रहता है कि लड़कियों, महिलाओं, बच्चों, युवा परिवारों से बातचीत करें। इसमें मुझे ये भी दिखा कि कितना जनरेशन गैप है, दोनों पीढ़ियों में कितना अंतर है।
0: ये बात तो 100% सच है विनीता जी कि ये जनरेशन गैप बहुत बढ़ चुका है और सोच बिल्कुल अलग अलग है दोनों की। तो विनीता जी, एक बात जानना चाहूंगा आपसे कि ये गैप जो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है उसका कारण क्या है और अगर इसको परिभाषित किया जाए तो आप कैसे करेंगी?
1: जनरेशन गैप संतोष दो पीढ़ियों का वो अंतर होता है जिसमें के जो बुजुर्ग हैं, जो हमारे बड़े हैं, वो एक अनुशासित, एक परंपरा और एक अलग ही तरीके के जीवन

0: को चलते आए हैं और वो चाहते हैं कि जवान लोगों पर वही सोच विचारधारा वही लागू की जाए, लेकिन जो जवान लोग हैं वो तेजी से जो बदलाव आ रहा है समाज में, जो पाश्चात्य देशों का जो प्रभाव है, जो सोशल मीडिया है, युवा पीढ़ी बिल्कुल नई सोच रखती है, उनको स्वतंत्रता चाहिए, उनको बड़े बुजुर्गों की बात बिल्कुल सुननी नहीं है
1: जी।
0: तो ये गैप, ये हमारे समय में भी था पीढ़ियों में अंतर, लेकिन इतना ज्यादा नहीं था, इतना अधिक नहीं था कि बीच में कोई एक मिडिल पाथ निकाला जाए, एक बीच का रास्ता निकाला जाए जिसमें बैठ के बात की जाए।
1: बिल्कुल,
0: मैं खुद ही बहुत परेशान होती हूँ। मेरे परिवार में मेरी 90 वर्ष की माता जी हैं जो बहुत ही अनुशासित रही हैं, बहुत ही डिसिप्लिन से उन्होंने अपनी लाइफ जी है। अब मेरी माता जी के जो ग्रैंड चिल्ड्रन है, मतलब उनके जो द्योते पोते हैं, पोतियां हैं, उनका जो जीवन जीने का तरीका है वो बिल्कुल फर्क है
1: जी।
0: मेरी माता जी सुबह सुबह उठती हैं, अपने सारे काम करती हैं, बहुत मेहनत करती हैं अभी तक, और बहुत ही अनुशासित हैं, सब चीज बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। और जो उनके ग्रैंड चिल्ड्रन हैं वो बिल्कुल उल्टे हैं, वो रात भर जगते हैं, उनका खाने खाने का कोई टाइम ही नहीं है, उनको कुछ बोला जाए तो वो सुनते ही नहीं है
1: जी।
0: और तो और आजकल के जवान लोग तो विवाह जैसी बात में बिलीव ही नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप कौन से जमाने में रहती हैं जो आप हमें कह रही हैं कि शादी कर लीजिए। तो इतना ज्यादा अंतर सुनने में तो हंसी आती है, लेकिन जो उससे गुजरता है, अगर एक बुजुर्ग और एक जवान एक साथ रहें तो उनके जीवन में इतना अंतर आ गया है कि वो को एग्जिस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। मेरी माता जी का कहना है तो मेरी बात सुनो, मैं बड़ी हूँ, जो मैं कह रही हूँ वो सही है, समय पर उठो, समय पर खाओ, समय पर पढ़ाई करो, एक्सरसाइज करो, अपनी सेहत का ध्यान रखो। लेकिन जो जवान पीढ़ी है उसको कंप्यूटर से फुर्सत ही नहीं है, वो रात भर जगती है, बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं, घर का खाना खाना ही नहीं है, जो उनका मन करता है करते हैं, जब आना है आते हैं, जब जाना है जाते हैं
1: जी।
0: तो हंसी तो आती है देखकर, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा मन मुटाव भी हो जाता है, कई बार बच्चे घर छोड़ के चले जाते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा विनीता जी आपने, आज की पीढ़ी जिसे हम जेन अल्फा या जेन जी के नाम से पुकारते हैं, उनका व्यवहार यही देखने को मिलता है कि अगर उनकी बात नहीं मानी या उन पर कोई निर्णय जबरदस्ती थोपा गया तो वो रिश्ता तोड़कर आगे बढ़ने में गुरेज नहीं करते, बेशक बाद में पछताना पड़े और अपने बुजुर्गों से बाद में ये कहना पड़े।

विनीता जी, ये गीत सुनते सुनते मुझे कहानी याद आ गई कि एक पिता की दो संतान थी। उसका बड़ा बेटा पिता की बातों को फॉलो करता था, तो वहीं छोटा बेटा अपने दोस्तों के संग मस्ती में चूर रहता था। और एक दिन छोटा बेटा अपने दोस्तों के कहने पर अपने पिता से अपना हिस्सा मांगता है। पिता उसको बहुत समझाते हैं, अच्छे बुरे का एहसास दिलाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन छोटा बेटा अपने दोस्तों के बहकावे में इस कदर बहक चुका था कि उसने अपने पिता, अपने बड़े भाई और सब घर वालों की एक ना सुनी।

0: और आखिर में उसके पिता ने दो हिस्से कर दिए और ये छोटा बेटा अपना हिस्सा लेकर दूर चला जाता है ये सोचकर कि वो ऐश करेगा और खूब पैसे कमाएगा। कुछ दिन तो सब अच्छा अच्छा लगता है उसको, लेकिन जब पैसे खत्म होने लगते हैं तो दोस्त भी उसका साथ छोड़ जाते हैं और फिर उसको ये एहसास होता है कि काश उसने अपने पिता की, अपने बड़े भाई की बात मानी होती तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। और फिर वो डिसाइड करता है कि वो वापस अपने घर जाएगा और वो वापस डरते डरते अपने घर वापस आता है, पिता से माफी मांगता है और पिता की महानता देखिए कि पिता उसे माफ करते हुए उसे कहते हैं कि जो खो गया था वो मुझे वापस मिल गया। मतलब कहानी ये संदेश देती है कि माँ बाप हमेशा अपने बच्चे की भलाई के बारे में सोचते हैं। अगर उनसे कुछ गलती हो भी जाती है तो वो माफ करने को तैयार भी रहते हैं। विनीता जी, अच्छा एक बात बताइए कि जो जेनरेशन गैप देखने को मिल रहा है उसको कैसे दूर किया जा सकता है?
1: मुझे लगता है संतोष कि दोनों पीढ़ियों को एक दूसरे को इज्जत देनी बहुत जरूरी है।
0: जी।
1: मैं अपनी माता जी को समझाने की कोशिश करती हूँ कि आप कौन से जमाने की बात कर रही हैं।
0: ओके।
1: अभी जमाना बिल्कुल बदल चुका है और वही बात मैं अपने जवान बच्चों को भी बताने की कोशिश करती हूँ कि आप कुछ तो अच्छा सीखिए बड़े बुजुर्गों से, जो उनका डिसिप्लिन है, जो उनका अनुशासन है, जो उनकी तहजीब है, जो बड़ों से बात करने का तरीका है, जो बड़ों की राय लेना, जो परिवार विवाह जैसे सिस्टम में बिलीव करते हैं, ये सब अच्छे सिस्टम्स बने हैं। हमारे बड़े बुजुर्गों ने बहुत अच्छी टीचिंग हमें दी है, लेकिन आजकल के बच्चों तो बिल्कुल के कान पर तो वो जू भी नहीं रेंगने देंगे, जिसे कहते हैं ना, वो बिल्कुल नहीं सुनना चाहते। तो किस तरीके से दोनों पीढ़ी एक दूसरे की इज्जत करें, बैठ के बातचीत करें। और मैंने देखा है कि वो करते हैं, प्रयास करते हैं, प्रयास कोशिश करते हैं, लेकिन अधिकतर पाया गया है जो हमारी बुजुर्ग पीढ़ी है, जो बड़े हैं, वो कई बार इतने ज़्यादा पुरुषवादी हैं, वो सुनना नहीं चाहते हैं और वो हिंसा का सहारा लेते हैं। इससे जवान लोग बहुत दुखी और परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे तो युवा पीढ़ी बिल्कुल ही दूर होती चली जाएगी और कहीं भी साथ बैठकर एक जगह बात नहीं की जाएगी। हमें संवाद रखना और दोनों पीढ़ियों को एक दूसरे से सीखना जरूरी है।
0: जी हाँ, जहाँ बातचीत के दरवाजे खुले होते हैं वहाँ समाधान भी जल्दी निकल आता है। इसीलिए एक दूसरे को समझते हुए अपनी ईगो, अहंकार और अपने गुस्से को दूर रखकर बातचीत करें और एक दूसरे को समझने का प्रयास करें। और इस बात को हमेशा याद रखें कि कोई भी, चाहे वो बड़ा हो या कोई जवान, हर समय उसकी सोच या उसका नजरिया ही सही नहीं होता। इसीलिए एक दूसरे की बातों को अहमियत दें और एक दूसरे की इज्जत भी करें। दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताएं। और अगर आप हमारे काउंसलर से बात करना चाहते हैं तो आप हमारे काउंसलर से फोन या मैसेज के द्वारा बात कर सकते हैं 7678438471 पर। जी हाँ, 7678438471। और अगर आप अपनी बात को फोन पर रिकॉर्ड करके भेजना चाहते हैं तो वो भी आप हमको भेज सकते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और दिशा फाउंडेशन से जुड़कर लोगों को सही दिशा और मार्गदर्शन देकर उनकी जिंदगियों को संवारने में हमारा साथ देना चाहते हैं तो आप हमें आज ही मैसेज करें या हमारे काउंसलर से बात करें 7678438471 पर। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर आपसे होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ।

0: तक के लिए आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा। नमस्कार।
1: दिस प्रोग्राम वॉज स्पॉन्सर्ड बाय दिशा फाउंडेशन।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: 102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप। नमस्कार, मेरा नाम है स्वाति और मैं लेकर आई हूं आपके लिए हमारा वो स्पेशल प्रोग्राम जो जुड़ा है हमारे यंग स्टूडेंट्स के साथ में, हमारे कैंपसेस के साथ में। जी, नाम है इसका अल्फाजन कैंपस कॉलिंग और इसे सुनते हैं आप हर बुधवार शाम को 4 से 5 बजे के बीच सिर्फ और सिर्फ 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे। आज हमारी सहयोगी ऋचा वर्मा पहुंची BR अम्बेडकर कॉलेज और वहां पर जाके उन्होंने की बहुत सारी तहकीकात, बहुत सारी बात की उन्होंने वहां के स्टूडेंट्स से, वहां के टीचर से, वहां के प्रिंसिपल से और ये सब कुछ। और उसके अलावा इस कॉलेज की जानकारी और इसके कोर्सेज, इसके स्टूडेंट्स, उनका टैलेंट, ये सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे हमारे आज के इस प्रोग्राम में। अल्फाजन कैंपस कॉलिंग सुन रहे हैं आप सिर्फ और सिर्फ 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे और ऋचा वर्मा के साथ स्टूडेंट्स की बातचीत मैं प्ले करने जा रही हूं आप सभी के लिए। आप सुनते रहिए हमारा ये स्पेशल प्रोग्राम जो डेडिकेटेड है हमारी कैंपस लाइफ को, हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी को।
2: अल्फाजन कैंपस कॉलिंग के इस एपिसोड में जहां हम आए हुए हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज, मेरे साथ एक स्टूडेंट हैं, आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका?
3: हेलो मैम, आई एम आद्य विश्वकर्मा एंड मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज की थर्ड ईयर की स्टूडेंट हूँ।
2: सबसे पहले तो इंटरनेशनल यूथ डे की आपको ढेरों शुभकामनाएं।
3: थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।
2: तो आद्य, आपके लिए युवा होने का सबसे खूबसूरत हिस्सा क्या है?
3: मैम, मेरे लिए युवा होने का सबसे खूबसूरत हिस्सा ये है, बस नई चीजों को एक्सप्लोर करने की आजादी है।
2: बहुत अच्छी बात कही आपने, लेकिन आजकल के युवाओं के पास जहां बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, वहां उनके पास बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, है ना? तो आज के युवाओं के लिए सबसे बड़ी एस्पिरेशन क्या है? एक अच्छी नौकरी, एंटरप्रेन्योरशिप, रिकॉग्नाइजेशन या फिर सोसाइटी में चेंज लाना? क्या सोचता है आज का युवा?
3: मैम, आज का युवा कुछ ऐसा सोचता है कि ना, लाइक उनकी सबसे बड़ी एस्पिरेशन ये है कि वो इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहता है, चीज चाहे वो अच्छी नौकरी से हो या एंटरप्रेन्योरशिप से हो, समाज में बदलाव लाकर हो, तो सबसे बड़ा वो ना इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहता है। आज का युवा सिर्फ सफल नहीं होना चाहता, वो चाहता है कि वो हर काम में याद रखा जाए।
2: बहुत अच्छी बात कही आपने आद्या, और बिल्कुल सही बात है, आज का युवा इम्पैक्ट चाहता है, वो चाहता है कि उसे याद रखा जाए
3: के लिए।
2: बहुत अच्छी बात कही आपने। तो आद्या का सपना क्या है? ऐसा कौन सा सपना है जिसे आप हर हाल में पूरा करना चाहती हैं?
3: मैम, मेरे जीवन का सबसे बड़ा सपना यह है कि मैं अपने माता पिताजी को वो सब कुछ दे सकूं जो उन्होंने मेरे

0: कुछ नहीं करती है, बल्कि नए नए एक्सपेरिमेंट्स करती रहती है और नए तरीके से बढ़ने के लिए चीजें करती है। तो मुझे लगता है कि ये हमारी जनरेशन की सबसे बेस्ट थिंग है।
1: अच्छा, सोशल मीडिया का जमाना है और आप जानते ही हैं कि सोशल मीडिया यूथ्स की पहली पसंद है। क्या सोशल मीडिया युवाओं की एस्पिरेशन बढ़ा रहा है या फिर आपको लगता है कि उन पर एक अननेसेसरी प्रेशर पड़ रहा है?
0: मैम, वैसे जनरली मैं जिस तरह से देख रहा हूँ अभी, तो इसका बहुत प्रेशर भी हम लोगों पे पड़ रहा है। लेकिन इंस्पिरेशन बहुत है इस चीज को लेके, कि हम चीजें बहुत जल्दी देखते हैं और बहुत इजीली हमारे तक चीजें अवेलेबल हो जाती हैं। तो वो कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन है कि हम देखते हैं कि कुछ इस तरीके से भी किया जा सकता है। हमें नए थॉट्स मिलते हैं, नए तरीके से सीखने और सोचने की जो क्षमता सोशल मीडिया दे रहा है, तो ये हमारे लिए बेस्ट थिंग है मैम, कि हमारे जनरेशन को ये चीज मिली है।
1: एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही बात है। हमें खुद पर फोकस करना है और चेंज होना है, पर आजकल का युवा खुद पे सेल्फ सेंटर्ड नहीं है, वो बहुत बड़ी बड़ी बातें सोच रहा है। ऐसे में अगर मैं आपसे कहूं कि कई सारे ऐसे ग्लोबल मुद्दे हैं जिन पर युवा की जो राय है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उनमें से एक है क्लाइमेट चेंज जैसी ग्लोबल समस्या है। इससे निपटने के लिए आपको क्या लगता है कि आपका युवाओं के लिए एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या रहेगा?
0: हम अपने आसपास नदियों को भी साफ रखें, उनपे जो धार्मिक जिस तरीके से चीजें की जाती हैं, तो उस नदियों में गंदगियां ना डालें, साफ सफाई रखें, प्लास्टिक का कम से कम यूज करें, वन टाइम प्लास्टिक जो है उसका यूज हम इग्नोर करें, चीजें प्लास्टिक का बेसिकली कम यूज करें हम, तो वो हमारे जनरेशन के लिए, क्लाइमेट के लिए बहुत अच्छा होगा।
1: एब्सोल्युटली, और ऐसा करके न केवल आप अपनी जनरेशन को बल्कि अपने आने वाले जनरेशन को भी बेहतर करेंगे। राम, आपसे जानकारी प्राप्त करके हमें बहुत अच्छा लगा और आई एम श्योर कि जो आपकी सोच है वो न केवल आपके आजकल के युवाओं को बल्कि आने वाले जनरेशन को भी अवेयर करेगी। थैंक यू सो मच राम हमसे जुड़ने के लिए।
0: थैंक यू सो मच मैम।
1: तो हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कॉलेज की एक और स्टूडेंट है, क्या नाम है आपका?
2: तनु त्रिवेदी।
1: तनु, एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे कि इंटरनेशनल यूथ डे आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं यूथ्स को, तो क्योंकि आप भी एक यूथ हैं, और हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज की युवा पीढ़ी के पास अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं या कंपटीशन ज्यादा है, और वो इन दोनों को कैसे मैचअप कर रहे हैं?
2: मैं ये कहूंगी मैम कि आज का जो यूथ है उसके पास अपॉर्चुनिटीज पहले से तो ज्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को नहीं झुठलाया जा सकता कि उसके पास कॉम्पिटिशन भी उससे ज्यादा है। मतलब वो आजकल देखा जाए तो वो सिर्फ एक बैकग्राउंड में सीमित नहीं है, गांव में या फिर अपनी क्षेत्र में सीमित नहीं, वो बाहर निकल रहा है, पढ़ रहा है, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, सोशल मीडिया, ऑनलाइन क्लास, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। लेकिन एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम को किसी भी फील्ड को उठा के देखते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, जैसा कि हम देखते ही हैं कि बहुत सारे युवा जो हैं वो अपनी पढ़ाई के लिए शहरों की तरफ मूव करते हैं, जो ग्रामीण युवा हैं। ऐसे में जो ग्रामीण युवाओं के पास जो अपॉर्चुनिटीज और जो शहरी युवाओं के पास जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनमें एक गैप है, ये आपने भी महसूस किया होगा,
2: जी।
1: तो आपको क्या लगता है कि हम इन्हें कैसे कम कर सकते हैं और दोनों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं?
2: मेरे हिसाब से मैम टैलेंट गांव और शहर को देख के नहीं पैदा, टैलेंट तो सब में होता है, अपॉर्चुनिटीज भी अलग अलग होती हैं, लेकिन इनके गैप को कम करने के लिए हम क्वालिटी एजुकेशन, इंटरनेट एक्सेस, स्किल डेवलपमेंट, जो बहुत सारे संगठन हैं वो जाके ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को शिक्षित करना, उन्हें बताना, उन्हें चीजों के लिए प्रेरित करना, उन्हें बहुत सारी, तो कहीं ना कहीं जो शहरी शिक्षा है वैसी ही ग्रामीण शिक्षा को हम बनाएं तो बहुत सारे युवाओं को जरूरत नहीं पड़ेगी अपने घर से निकल के बाहर रहने की।
1: बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर आज के जो ग्रामीण क्षेत्रों के जो युवा हैं अगर उन्हें भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज देनी है तो हमें उन्हें उन तक क्वालिटी एजुकेशन को पहुंचाना होगा, ना कि वो चलकर क्वालिटी एजुकेशन तक पहुंचे। अच्छा, एक बात और बताइए कि आज देश का हर एक युवा अगर आपकी कोई एक सलाह माने और उसे अपनी जिंदगी में अपनाए तो वो आपकी तरफ से उनके लिए क्या सलाह होगी?
2: अगर मेरी सलाह माने तो मैं उनसे हर देश के युवक को यही कहना चाहूंगी कि खुद सुनो और खुद पे विश्वास करो।
1: जी, अच्छा, अब समय हुआ है एक छोटी सी गेम का जिसे हम कहते हैं माय टॉप थ्रीज। तो इसमें मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी और आपको अपने टॉप थ्रीज बताने होंगे, ठीक है तनु?
2: ओके।
1: तो माय टॉप थ्री यूथ आइकन्स।
2: विकास दिव्य कीर्ति सर, डॉक्टर तनु जैन मैम,
1: जी
2: और मेरे एक टीचर जिन्होंने मुझे पढ़ाया है, आदर्श मिश्रा सर।
1: ओके। आपके टॉप थ्री करियर ऑप्शंस।
2: जर्नलिज्म में एंकर बनना, आईएएस बनना, आर्मी में जाना, इंडियन आर्मी।
1: आपके टॉप थ्री टूरिस्ट डेस्टिनेशंस।
2: कश्मीर जैसा सबका होता है, कश्मीर, दूसरा बनारस और तीसरा मध्य प्रदेश।
1: तीन ऐसी

0: बेसिक सिविक सेंस जो हम यूथ्स को जरूर डेवलप करनी चाहिए ताकि हम सक्सेस से नजरें मिला पाए और सक्सेस तक जल्दी पहुंच जाए।
1: क्लीननेस के मामले में अगर हम खुद अपना पिया कचरा अपने खाए पैकेट को डालें तो गंदगी नहीं होगी। दूसरे की मैं अगर बात करूं तो कहीं ना कहीं यूथ सबसे ज्यादा ट्रैफिक रूल्स तोड़ता रहता है या कहीं ना जल्दबाजी में रहता है, हमें पेशेंस नहीं होता जेंजीज में। तो ये, और तीसरा मैं कहना चाहूंगी कि अपने अधिकारों का सम्मान करते हुए सबका सम्मान करना, क्योंकि
0: ओके, थैंक यू सो मच तनु हमसे बातचीत करने के लिए। और ये कहते हुए मुझे बड़ा ही गर्व हो रहा है कि हमारा जेंजी जो है वो बहुत ही अवेयर है, अपने करियर को के ऑप्शंस को लेकर बहुत क्लियर है और उनके विजन में उन्हें कोई कंफ्यूजन नहीं है, उनकी एस्पिरेशन एकदम साफ है। तो कोई भी कंटेक्स्ट हो, जैसे कि इस बार की थीम है डिफरेंट कंटेक्स्ट सेम एस्पिरेशंस कॉमन एस्पिरेशंस, एंड आई एम श्योर कि चाहे किसी भी कंटेक्स्ट का युवा हो उसकी एस्पिरेशंस जरूर फुलफिल हो। ऐसी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए।
1: थैंक यू सर।
0: मेरा नाम है ऋचा, कैंपस कॉलिंग के इस एपिसोड में आज मैं आई हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज। मेरे साथ एक स्टूडेंट है, आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका?
2: मेरा नाम नंदिनी।
0: नंदिनी। नंदिनी, कैसा लग रहा है आपको? ओरिएंटेशन डे है, आपके नए साथी और जुड़ रहे हैं कॉलेज में।
2: बहुत अच्छा लग रहा है। जब ओरिएंटेशन शुरू हुआ, मैं सुबह सुबह आई तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं भी एक टाइम था जब हम लोग यहाँ ओरिएंटेशन के दिन आए थे, ना किसी को जानते थे ना किसी को पहचानते थे।
0: तो जब आप इस कॉलेज में आई तो एकेडमिक्स के अलावा आपका क्या इंटरेस्ट है?
2: इस कॉलेज में आने का मेरे पास मेन दो रीजन था। फर्स्ट कि मैं एचजीएमसी यानी कि अपना मास कम्प्लीट करूँ, और सेकंड कि मेरे को ना बैडमिंटन में बहुत इंटरेस्ट है। तो मैं चाहती थी कॉलेज आकर मैं अपने जो मेरा स्पोर्ट है वो मैं यहाँ पे इंटरेस्ट है और उसको बढ़ाऊँ और उसको जो उसका लेवल है उसको हाई पर लेके जाऊँ।
0: तो कौन सी सोसाइटी और कौन सा क्लब है आपके हिसाब से जिसने आपकी पर्सनालिटी को एक बूस्ट दिया है?
2: सबसे बड़ी सोसाइटी और सबसे अच्छी सोसाइटी जो मेरी है वो है डिबेट सोसाइटी, जिसके भरोसे मैं आज कई मंचों पर गई हूँ। आईएमसी तक मैंने अपनी पहुंच बढ़ाई है और वहां जाके मैंने पोजीशंस ली है।
0: तो फर्स्ट ईयर में क्या कोई ऐसी गलती है जो आपने की है और आप अपने जूनियर्स को सलाह देना चाहें कि देखो मुझसे तो ये हो गया लेकिन तुम मत करना?
2: जो हमारे फर्स्ट ईयर आए, जो नए स्टूडेंट आए, उनको मैं यही सलाह देना चाहूंगी कि फर्स्ट ईयर में आप अपना मेन फोकस उस पे कीजिए जिस फोकस के साथ आप यहाँ पे आए हैं। किसी और जगह, मतलब अपनी फोकस को किसी और जगह ना जाने दे, जो कि मेरे साथ हुआ है। लेकिन मैं बाद में उसको एक समय के साथ अपने पास ले आई, पर मुझे उसमें टाइम लगा और मैं नहीं चाहती कि फर्स्ट ईयर को टाइम लगे। वो अपनी चीजें उसी समय उसी साथ रखे तो उनके लिए ज्यादा आसान होगा।
0: बहुत ही अच्छी सलाह है, और हमें उम्मीद है कि न केवल आपके कॉलेज के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट बल्कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो भी फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स आए होंगे वो इस बात को जरूर फॉलो करेंगे। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: धन्यवाद। मेरा नाम ज्योति सैनी है और मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कॉलेज में एचजीएमसी की स्टूडेंट थर्ड ईयर।
0: आपकी सबसे बड़ी ताकत आपको क्या लगता है क्या है?
3: मेरी सबसे बड़ी ताकत है कि मैं जो फील करती हूँ वो मैं बोल देती हूँ कॉन्फिडेंटली, और शायद ये कॉन्फिडेंस मेरे अंदर एचजीएमसी में पढ़ के आया है। जर्नलिज्म आपको एक कॉन्फिडेंस दे देता है, तो शायद ये वही है।
0: ओके, और आपकी सबसे बड़ी वीकनेस क्या है?
3: कि मैं सब पे ट्रस्ट कर लेती हूँ।
0: और इसे ओवरकम करने के लिए आप क्या कर रही हैं?
3: इसे ओवरकम करने के लिए थोड़ा सा टाइम लेती हूँ, लोगों पे ट्रस्ट करने के लिए बात करती हूँ, जानती हूँ पहले लोगों।
0: आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका?
4: जी मेरा नाम सिम कुमार हुआ।
0: अच्छा, तो आज आपका पहला दिन है कॉलेज में, कैसा लग रहा है?
4: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है वैसे तो।
0: आपने इस कॉलेज को क्यों चूज किया?
4: एक्चुअली मैंने इसके बारे में थोड़ा सुना था कि ये कॉलेज बहुत ज्यादा अच्छा है बीए पत्रकारिता के लिए,
0: तो इसलिए आप इस कॉलेज में आए हैं। अच्छा, आपके कोई दोस्त बने यहाँ पे?
4: हाँ,
5: मेरा नाम विमलेश है और मैं बीए हिंदी जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की थर्ड ईयर की स्टूडेंट।
0: कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका इस कॉलेज के साथ?
5: मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है, फर्स्ट एंड थर्ड ईयर मतलब बहुत अच्छा रहा है, और फर्स्ट ईयर का मैं मुझे सेकंड मतलब टॉपर का अवार्ड भी मिल रखा है। तो
0: इस कॉलेज को आप किस बात के लिए याद करेंगी? कि आपको अच्छी एजुकेशन दी इस बात के लिए, आपके सपने पूरे किए इसलिए, या आपको बहुत अच्छे दोस्त मिले इसलिए?
5: अगर मैं एक चीज को मैं चूज नहीं करूंगी, तीनों चीजें बहुत ही स्पेशल रही हैं। और रही बात एक शिक्षा की, तो शिक्षा के लिए हम सभी आए हैं यहाँ पर।
0: बहुत अच्छी बात है। आजकल के जेंजीज के बारे में बहुत लोग बहुत कम जानते हैं, और अगर मैं कहूँ कि जेंजीज की तीन सबसे बड़ी खासियत क्या है जो एक जेंजी ही बताए तो ज्यादा सही रहेगा।
5: पहली चीज, हम लोग ऐसा नहीं होता कि कुछ मन में कुछ और रखते हैं और फेस पे कुछ और बोलते हैं। जो ऑन द स्पॉट मन में आ रहा है या जो चीज हम देख रहे हैं वो एक्सप्रेस करने की कह सकते हैं कि जेंजी में है। पहले के टाइम पे क्या होता था कि लड़कियां ना खुद को लड़की समझ के बोल नहीं पाती थी। टाइम पे लड़कियां क्यों लड़कों से पहले बोलने के लिए तत्पर रहती हैं कि हाँ मैं बोलूंगी।
0: चलिए, अब ऐसा एक सीक्रेट बताइए हम लोगों को जिसके बारे में यहाँ पर लोग कम जानते हैं। आपकी ऐसी कौन सी खास बात है, ऐसा कोई टैलेंट है जो हिडन है और बहुत कम लोग जानते हैं?
5: मैं कुकिंग बहुत अच्छी करती हूँ।
0: आपसे बात करके मैं बहुत अच्छा लगा विमलेश, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस।
5: थैंक यू मैम।
6: नमस्कार मैम, मेरा नाम विशाल है।
0: तो ये बताइए कि अगर कभी ऐसी कोई आपकी जिंदगी

0: कोई फिल्म बने तो उस फिल्म का टाइटल क्या हो सकता है?
1: अगर मेरी लाइफ पे अगर कोई मूवी बनेगी तो होगी हंसी का पिटारा।
0: क्योंकि आपको हंसना हंसाना बहुत पसंद है।
1: हाँ, कह सकते हैं मस्त मौजा बंदा हूँ मैं। अपनी कोई भी फेक पर्सनैलिटी लोगों के सामने नहीं रखता, जैसा मैं अभी हूँ वैसा ही मैं हमेशा रहता हूँ।
0: बहुत अच्छी बात है, हमें ऐसा ही रहना चाहिए। और अगर एक ऐसा गाना जो आपको हमेशा मोटिवेट करता हो।
1: एक कैलाश खेर जी का एक गाना है माँ, वो जब भी मेरे को लो फील होता है तो मैं हमेशा वही सुनता हूँ। हाँ।

0: मम्मा।
1: बहुत अच्छा गाया आपने, बहुत बढ़िया।
0: धन्यवाद मैम।
1: चलिए, आपसे बात करके मैं बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसे ही गाते रहें, मुस्कुराते रहें, डांस करते रहें, एंजॉय करते रहें।
0: धन्यवाद मैम।
2: मेरा नाम गगनदीप है, मैं 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ।
1: तो आप, मैं एक शब्द बोलूंगी और उस शब्द सुनते ही सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है, आपको वो शब्द बोलना है।
2: कॉलेज मेमोरीज,
1: दोस्ती
2: दोस्ती बॉन्ड,
1: सक्सेस
2: सक्सेस अचीवमेंट,
1: प्यार
2: ट्रस्ट,
1: दिल्ली
2: दिल्ली एक्सप्लोर,
1: फ्यूचर
2: फ्यूचर ब्राइट।
1: अच्छा, अगर आपको कभी कोई सुपर पावर मिले तो वो क्या होगी, आप क्या चाहेंगे, आपको क्या सुपर पावर मिलेगी?
2: मुझे लाइक फ्यूचर में जाना पसंद नहीं हुआ।
1: थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए।
2: थैंक यू।
1: क्या नाम है आपका?
3: मेरा नाम उदय है, मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज से जर्नलिज्म कर रहा हूँ और मैं 2nd ईयर में हूँ।
1: अपने आप को एक शब्द में डिफाइन करना हो तो?
3: सेल्फ ऑब्सेस्ड।
1: तो आप अपनी सबसे बड़ी ताकत क्या मानते हैं?
3: मैं वीडियो एडिटर हूँ तो मुझे एडिटिंग करने में ज्यादा अच्छा लगता है और मैं उससे अर्न कर पाता हूँ तो मुझे काफी अच्छा फील होता है।
1: तो इस कॉलेज में आपका सबसे फेवरेट स्पॉट कौन सा है?
3: कैंटीन।
1: कैंटीन में सबसे अच्छा क्या मिलता है?
3: सबसे अच्छा मंचूरियन राइस।
1: और दिल्ली की सबसे अच्छी बात आपको क्या लगती है?
3: दिल्ली की वाइब अलग है हर जगह से, मतलब कहीं पे भी चले जाएंगे लेकिन दिल्ली की वाइब अलग होती है। जगह बहुत सारी है घूमने के लिए, अगर आप दिल्ली में आ रहे हो तो आप इतना घूम सकते हो, टाइम खत्म हो जाएगा लेकिन जगह खत्म नहीं होगी।
1: बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के।
3: थैंक यू मैम।
1: क्या नाम है आपका? दिया। तो आप क्या लिखती हैं, कहानी कविताएं किस तरह से?
4: मैं इंटरनेशनल यूज पहले देखती हूँ, फिर उस पे रिसर्च करती हूँ एंड फिर उस पे खुद से स्क्रिप्ट बनाती हूँ और फिर वीडियो बनाती हूँ।
1: यानी आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं।
4: yes.
1: कभी जितने भी हमारे यंग कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है ट्रोलिंग का, कि कई बार वो लोग ट्रोलिंग का सामना करते हैं और उसे लेकर बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं। क्या आपका कभी सामना हुआ ट्रोलिंग से?
4: हाँ, बहुत बार हुआ, बहुत बार हुआ, बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला भी, लेकिन मैं ध्यान देती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं इग्नोर कर पाती हूँ। मैं बहुत बार ध्यान देने की वजह से मैं बहुत डीमोटिवेट हुई, मैंने काम अपना छोड़ दिया, लेकिन फिर मैं हमेशा कुछ लोगों की वजह से मैं मोटिवेट होती रही और मैंने अपने काम को कंटिन्यू किया।
1: लेकिन सोशल मीडिया की दुनिया में एक और चैलेंज है और वो चैलेंज है फेक न्यूज का।
4: फेक न्यूज जो आते हैं उसको मैं सुनती हूँ और फिर मैं उसको रिसर्च करती हूँ। कोई भी न्यूज सुनो, आपको पता होता है कि ये फेक न्यूज है, क्योंकि आपको अगर अगर वो साइट से आपको पता चलते रहेगा तो आपको रिसर्च पे हमेशा ध्यान देना चाहिए और साइट से आपको खुद भी चेक करना चाहिए। जैसे कि आपके पास अगर व्हाट्सएप पे बहुत सारी न्यूज आती है तो उसको आप रीशेयर रीशेयर बार बार ना करें, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि वो फेक होता है, तो आपको पहले रिसर्च करना चाहिए कि वो सही है या गलत है, उसके बाद ही आप लोगों के पास उसको शेयर करें।
1: बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर जो भी कुछ हम देखते हैं हम उसे सच मान लेते हैं और हम चाहते हैं कि ज्यादातर लोगों का भला हो, इसलिए हम उसे ग्रुप्स में शेयर करते हैं, तो ये शेयरिंग बंद होनी चाहिए। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए।
4: ओके मैम, थैंक यू।
5: जी हाँ, लेकिन अच्छी बातों की शेयरिंग जो है ना वो चालू रहनी चाहिए और अच्छी बातें हम आपसे शेयर करते हैं हमारे इस प्रोग्राम में अल्फा जन कैंपस कॉलिंग। यहाँ पर शेयर करते हैं हम यूथ के साथ ना केवल उसकी बातें बल्कि उसकी एस्पिरेशंस, उनके टैलेंट और उसके साथ साथ जितनी उनकी समझदारी है, जितनी उनके ख्वाब हैं, जितनी आकांक्षाएं हैं और जो भी वो सोचते हैं वो सब चीज़ें हमें मालूम चलती है कहाँ पर आखिर, सिर्फ और सिर्फ इस प्रोग्राम के जरिए। नाम है इसका अल्फा जन कैंपस कॉलिंग, 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे इसे आप सुनते हैं हर बुधवार शाम को 4 से 5 बजे के बीच। कॉलेज का सफर आगे जारी रहेगा, हमारी सहयोगी ऋचा वर्मा पहुंची हैं बीआर अंबेडकर कॉलेज और वहां से जो भी उन्होंने बातचीत की है वो सब मैं आप तक पहुंचाऊंगी, लेकिन फिलहाल मैं रुक रही हूं यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, आती हूं वापस इस ब्रेक के बाद। आप सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो।
6: आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6, दिल से दिल तक
7: आकाशवाणी रेनबो।
8: मम्मी बस अभी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचा, ट्रेन अभी आई है।
9: बेटा कुछ खा लो, मेरठ आते आते शाम।

0: अरे मम्मी, एक घंटे में घर पहुंच जाऊंगा, आप बस खाना तैयार रखिए।
1: इतनी जल्दी?
0: देश बदल रहा है मम्मी, अभी एयरपोर्ट जैसे ट्रेवलेटर पर चलकर साथ के नमो भारत सराय कालेखा स्टेशन जा रहा हूँ, वहाँ से ट्रेन पकड़कर बस मिनटों में मेरठ।
2: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय कालेखा से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुर होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
3: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
4: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
2: न तेज बारिश से दिक्कत, न ट्रैफिक का झंझट, नमो भारत ट्रेन से आरामदायक और तेज यात्रा की पक्की गारंटी।
5: दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच लाखों यात्री उठा रहे हैं सुगम यात्रा का आनंद। सराय कालेखा से गाजियाबाद सिर्फ 20 मिनट में,
2: आनंद विहार से मोदी नगर सिर्फ 25 मिनट में, आनंद विहार से बेगमपुर मेरठ सिर्फ 40 मिनट में,
5: हर 10 मिनट में ट्रेन उपलब्ध।
2: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत, घंटों का सफर मिनटों में।
6: आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6, दिल से दिल तक।

0: 102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप प्रोग्राम अल्फाजन कैंपस कॉलिंग। इसमें हर बार हमारे सहयोगी पहुंचते हैं अलग अलग कॉलेजेस में, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलग अलग कोनों से ढूंढ कर लाते हैं आपके लिए बहुत सारी मजे की बातें। और यूनिवर्सिटी के नज़ारे तो बिल्कुल आपको जो है हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से वो पहुंचाते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम कितना कुछ जानते हैं ना, अपनी जान पाते हैं इनफैक्ट अपने कॉलेजेस के बारे में, उनकी हिस्ट्री के बारे में, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में, कितना छुपा हुआ टैलेंट है जो कि छुपा ही रह जाएगा अगर हम उसे ढूंढने ना जाएं तो, उसको एक मंच ना दे तो। और एक मंच देने की कोशिश जरूर रहती है हमारे इस कार्यक्रम के जरिए। अल्फाजन कैंपस कॉलिंग वेंसडे का स्पेशल एडिशन जिसे आप सुनते हैं सिर्फ और सिर्फ 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे। हमारी सहयोगी ऋचा वर्मा पहुंची बीआर अंबेडकर कॉलेज 1991 में, जिसकी स्थापना हुई थी और 2016 में इसने अपनी सिल्वर जुबली जो है वो पूरी की है। और उसके बाद 10 साल और बीत गए हैं, बहुत सारा कुछ नया जो है वो होता रहता है हमारे तमाम कॉलेजेस में, हमारी यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी भी लगातार बदलते हुए टेस्ट के अकॉर्डिंग और ज़रूरतों के अकॉर्डिंग, और जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनकी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग अपने आप को नया करती रहती है, अपने आप को इवॉल्व करती रहती है। और इसी इवॉल्यूशन में बहुत सारे नए कोर्सेज भी ऐड होते हैं, ना केवल इस कॉलेज में बल्कि तमाम कॉलेजेस जो हैं लगातार अपने आप को अपडेट करते रहते हैं हमारी अपडेटेड जनरेशन के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए। और ये काम कौन करता है, ये काम करते हैं हमारे टीचर्स। तो चलिए जानते हैं कि हमारी सहयोगी ऋचा वर्मा ने बी आर अम्बेडकर कॉलेज के टीचर्स से क्या बातचीत की।
1: अल्फाजन कैंपस कॉलिंग के आज के एपिसोड में मैं आई हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज, और इस कॉलेज के एक टीचर मेरे साथ हैं। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है एफएम रेनबो पर।
2: धन्यवाद, मैं प्रोफेसर चित्रा रानी हिंदी विभाग से और कल्चरल कन्वीनर भी हूँ अपने कॉलेज।
1: आपके अनुसार एक विद्यार्थी को अपनी जो एजुकेशन है उसके साथ साथ कल्चरल एक्टिविटीज में क्यों पार्टिसिपेट करना चाहिए?
2: हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, पढ़ाई आप जीवन यापन करने के लिए, नौकरी के लिए करते हो, और ये कल्चरल जो है वो आपको एक इंसान बनाता है, आपके व्यक्तित्व को निखारता है। ये जो तमाम आज कंप्यूटर की दुनिया है, उस कंप्यूटर की दुनिया में दिल धड़कने के लिए और इंसान को बचाने के लिए मुझे लगता है कि कल्चरल से जुड़ा रहना बहुत जरूरी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: धन्यवाद।
1: एक और टीचर मेरे साथ हैं, आइए इनसे बात करते हैं।
3: मैं अनीता श्रीवास्तव, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, कन्वीनर काउंसलिंग कमेटी, भीमराव अम्बेडकर कॉलेज।
1: मैम, आजकल के जो यूथ्स हैं उनमें एग्रेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कि लोग बहुत ज्यादा सीरियसली लेते हैं चीजों को। इस तरह के इश्यूज क्या आपके सामने भी आते हैं इस कॉलेज में आके?
3: यस, डेफिनेटली हमारे सामने भी इस तरह के इश्यूज आते हैं। भीमराव अम्बेडकर कॉलेज में हमने काउंसलिंग कमेटी 2000 में शुरू करी थी, अभी इसको 25 साल हो गए हैं, हमने इसको सेलिब्रेट भी किया। और इसका बेस्ट पार्ट ये है कि डिपार्टमेंट साइकोलॉजी से बहुत सारे पास आउट स्टूडेंट हैं जो कि सर्टिफाइड काउंसलर हैं। दे आर पैनल्ड इन आर कॉलेज, अम्बेडकर कॉलेज में दे आर पैनल्ड, और वो डे टू डे अपनी सर्विसेज इन बच्चों को भी प्रोवाइड करते हैं। और हमने एक ऑफलाइन काउंसलर भी कर रखा है जिसको कि बच्चे रीच आउट करते हैं। एग्रेसिव प्रॉब्लम्स हम यहाँ देखते हैं, यहाँ हम एडिक्शंस की प्रॉब्लम्स देखते हैं, यहाँ हम एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम्स देखते हैं बच्चों में। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स लेके वो हमारे पास आते हैं और डेफिनेटली दे गेट द सोल्यूशन, उनको सोल्यूशंस मिलते हैं इस बात के।
1: हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: थैंक यू।
4: Hi, I am Dr. Sunita Chaki. I am in the Department of Business Economics right now. And I am also IQAC Coordinator, which is a Quality Assurance Cell.
1: आपने कहा कि आप Quality Assurance Cell में हैं। हम लोग क्या यहीं से आप Quality जो maintain होती है, क्या वही colleges की NEC ranking या NRF ranking के लिए responsible होती है?
4: वही चीज़ है। आप ये मान के चलिए कि जो Quality Assurance Cell है, वो दो level पे काम कर रहा होता है। एक कि आपके कॉलेज के अंदर जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं, आपकी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं, जो भी आपके टीचर्स की क्वालिटी है, जो भी आपका स्टूडेंट्स है उनके रिजल्ट का परफॉर्मेंस है, ये सारा काम को एनालाइज करना और उसको एक तरह से स्टोर करना, ताकि हम उसको NAC में या एक्रेडिशन में या NIRF में उसको दिखा सके, ये काम क्वालिटी एश्योरेंस सेल का होता है। हमारा इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल हम उसको बोलते हैं, तो IQAC का यही काम होता है। हमें बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं कि NIRF रैंकिंग में अम्बेडकर कॉलेज बहुत जल्द नंबर वन हो। थैंक यू सो मच।
5: मैं प्रोफेसर अतुल प्रताप सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क में हूँ। हमारा कोर्स रन होता है, उसका नाम बी ऑनर सोशल वर्क, मैं उसमें पढ़ाता हूँ।
1: सर, आज नए बच्चे आए हैं, और नए बच्चों के लिए क्या कोई नई स्ट्रैटेजी है या फिर कुछ नया है आज इस बार इस कोर्स में?
5: देखिए, अगर व्यक्तिगत रूप से मैं अपनी बात करूं तो हर साल कोशिश ये रहती कि बच्चों के लिए कुछ नए टूल्स, कुछ नए टेक्निक्स डिज़ाइन की जाएँ जो उनको पढ़ने में और सीखने में आसानी पैदा करे। तो मैं उसके साथ ही पूरे जोश के साथ आया हूँ और मेरे लिए तो ये व्यक्तिगत रूप से एक किसी फेस्टिवल से कम नहीं होता।
1: तो इसमें आपका क्या विचार है कि क्या अच्छे अंक सक्सेस की गारंटी लेकर आते हैं या जीवन में जो वैल्यूज हैं उनकी ज्यादा महत्ता होनी चाहिए?
5: देखिए, महत्ता तो वैल्यूज की होनी चाहिए, उसके अलावा जिस भी किसी कोर्स में पढ़ रहे हैं या जो भी हमारा करियर गोल है उससे रिलेटेड स्किल डेवलपमेंट होना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको जब आप जॉब मार्केट में जाओगे तो आपकी स्किल ही आपके काम आएगी, आपकी डिग्री नहीं आएगी काम।
1: सर, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
5: शुक्रिया।
6: मैं विजेंद्र कुमार प्रोफेसर हूँ और इस डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर महाविद्यालय में 95 से जो है यहाँ पर मैं अध्यापन कार्य कर रहा हूँ। और जब ये पाठ्यक्रम शुरू हुआ तो तभी से जो है मैं इस कोर्स से जुड़ा हुआ हूँ और आज बड़ी संख्या में

0: विद्यार्थी जो है वो विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम कर रहे हैं, फिल्मों में, रेडियो में, टेलीविजन में और दूसरे माध्यमों में अच्छा नाम कमा रहे हैं।
1: सर, जब कॉलेज में बच्चा आता है तो एक एक्सपेक्टेशन होती है उसकी। सर, आपके अनुसार जब इस कॉलेज से स्टूडेंट निकलता है तो ऐसी कौन सी सीख है जो उसे अपने साथ लेकर जानी चाहिए?
0: फर्स्ट ईयर में विद्यार्थी आता है तो उसके बहुत सारे सपने होते हैं। कॉलेज उन सपनों को पंख देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
1: बिल्कुल सर, आप ऐसे ही स्टूडेंट्स को शेप करते रहिए और हमें अच्छे अच्छे जर्नलिस्ट, अच्छे सिटीजन इंडिया के लिए मिलते रहें, यही हमारी शुभकामनाएं हैं आपको। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए। अल्फा जैन कैंपस कॉलिंग में आज मैं आई हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज, और इस कॉलेज के प्रिंसिपल सर मेरे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर,
2: मेरा नाम सदानंद प्रसाद है, मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज का प्रिंसिपल। बहुत बहुत धन्यवाद, कॉलेज में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
1: जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमेशा इक्वालिटी की बात की, हमेशा समानता की बात की, सभी धर्मों, सभी वर्गों को इक्वल देखने की बात करते हैं, उनके इतने अच्छे विचार हैं, इतने प्रेरक विचार हैं, उन सभी विचारों को ये कॉलेज किस तरह आगे बढ़ा रहा है?
2: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज ने जब जो संविधान बनाया है उसके अंदर उन्होंने वो सारी चीजें पहले से बता रखी हैं कि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन सी ड्यूटीज हैं हमारी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, किस काम को कैसे करना चाहिए। एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के हैसियत से इस कॉलेज के अंदर किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, चाहे किसी भी बेस पे हो। हम अपने बच्चों को पहले दिन से कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सारी चीजें बता के रखते हैं। पूरी हमारी कोशिश होती है कि हम बच्चों को बिल्कुल निस्वार्थ भाव से देखें, उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट हो, किसी को किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो, खास करके जाति, धर्म या किसी ऐसे नाम पे।
1: सर, जैसे कि ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, नए स्टूडेंट्स आपके कॉलेज में जुड़ रहे हैं, आपका परिवार बढ़ रहा है, तो सर नए आने वाले जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है?
2: हमारे नए स्टूडेंट के लिए तो सबसे पहले हमने ओरिएंटेशन डे पे उनका स्वागत किया। हमने पहले दिन अपनी आशाएं बताई है छात्रों को कि आपसे हमें क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, आपको कौन कौन सी चीजें हमारे कॉलेज में करनी है, अगले 4 साल आपको इस कॉलेज में बिताने हैं, कैसे सब्जेक्ट सिलेक्शन करना है, किन टीचरों से मिलना है, कौन कौन सी स्कीम्स हैं, कौन कौन सी कमिटीज हैं, कहाँ पे हम बहुत बेहतर हैं, कहाँ पे हम पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, कॉलेज का जो हमारा लिगेसी है उसको आगे ले जाने के लिए पहले दिन से हम उनको, और वो आगे जब कैसे कैसे कैरिकुलम को लेके जाना है उसमें उनको हमारे से क्या क्या चीजें चाहिए, हमें उनको क्या क्या चीजें देनी है, इन सब चीजों के लिए हमने फर्स्ट ईयर के बच्चों को बताया है।
1: सर, आप जानते ही हैं अब जमाना बदल रहा है, जैसी पढ़ाई हम लोगों ने की है, जैसी आपने की, उससे आगे आगे अब जमाना बदल रहा है। अब और इस बदलते हुए दौर में केवल डिग्री ही नहीं बल्कि स्किल्स भी बहुत जरूरी है। तो सर, कॉलेज के क्या प्रयास रहते हैं कि स्टूडेंट्स को किस तरह आज के जमाने के लिए ट्रेंड किया जाए?
2: ये बहुत अच्छा सवाल है आपने पूछा। एनईपी में खास करके जो सिलेबस तैयार किया गया है वो बिल्कुल एप्लीकेशन ओरिएंटेड है। अभी हम जितने भी कंपनीज हैं, कई कंपनियों से हमने अभी एमओयू किया है, हम अपने बच्चों को एक फील्ड विजिट के लिए मैंडेटरी भेजते हैं। खास करके हमारे यहाँ सोशल वर्क, साइकोलॉजी ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो अक्सर अपने बच्चों को कैरिकुलम के अकॉर्डिंग हर वीक लेके जाते हैं, जहाँ पे वो बच्चे जाके सीखते हैं बेसिकली कि क्या चीजें करनी चाहिए, आगे चल के इससे उनको क्या क्या चीजें मिलेंगी। जब वो यहाँ से पास आउट होके जाते हैं तो वो उनको पता होता है एग्जैक्टली कि आगे उनको करना क्या है। जो पत्रकारिता के हमारे बच्चे हैं, आप अगर हमारे कॉलेज में देखेंगी तो हमारे पास जितने भी बच्चे हैं, कॉलेज की जितनी भी इवेंट्स हैं, सबको वही देखते रहे होते हैं। सबसे इंटरव्यू लेना या फोटोग्राफी करना या कॉलेज को जो मीडिया क्षेत्र में जितनी भी जरूरतें होती है, हमारे बच्चे ही उसमें अपना पूरा सहयोग दे रहे होते हैं। जितने बच्चे इंटर्नशिप के लिए, खास करके जेएमसी, सोशल वर्क और ज्योग्राफी, 3-4 ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो इंटर्नशिप के लिए अपने बच्चों को हमेशा लगभग लगभग 100% बच्चों को इंटर्नशिप के लिए भेजते हैं। और हम कोशिश करते हैं कि जहाँ पे बच्चे इंटर्नशिप के लिए जाते हैं वहाँ सिर्फ जाके बैठ के नहीं आए, वहाँ पे जाके चीजों को देखे, सीखे और आके न सिर्फ अपने को, अपने जूनियर्स को भी बताएं कि ये चीजें हमने सीखी हैं, इसको ऐसे अप्लाई कर सकते हैं, ताकि वो बच्चे भी आगे चल के उनको पता हो कि हमें आगे चल के करना है।
1: जो कॉलेज में रिसर्च, इनोवेशन, स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं?
2: वैसे तो हम पहले से एंटरप्रेन्योरशिप पे बहुत ध्यान देते थे, स्टार्टअप्स भी बहुत सारी थी, लेकिन अब जो है एनईपी में ये हमारे लिए मैंडेटरी है, सिलेबस का पार्ट हो चुका है। तो हम ना हमारे पास रिसर्च या फिर एकेडमिक प्रोजेक्ट

0: के एंटरप्रेन्योरशिप करनी होती है। तो अभी हमारे पास एंटरप्रेन्योरशिप के पिछले बार थोड़े कम बच्चे आए थे, लेकिन उन बच्चों में से ही जो एंटरप्रेन्योरशिप की यूनिवर्सिटी में एग्जीबिशन लगा था, तो हमें प्राउडली फील होता है कि हमारे कुछ बच्चों ने वहां पे अवार्ड जीता।
1: सर ओरिएंटेशन था, नए बच्चे आए हैं, तो सर क्या कॉलेज किस तरह से तैयार है नए स्टूडेंट्स के लिए?
0: कॉलेज में बहुत सारी चेंजेस की जरूरत थी, जो हमने पिछले 1-2 साल के अंदर में काफी चीजें करी हैं। कुछ क्लासरूम के इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाई हैं, कुछ क्लासरूम्स को स्मार्ट रूम बनाने की तैयारी करी है, लैब्स में जो इक्विपमेंट्स नहीं थे वो सारी चीजें नई लेके आए हैं, नए नए लैब्स बनाए हैं। हमारे बच्चे लाइब्रेरी में जाएं, उनको वहां पे बैठने की सुविधा हो, पहले कुछ चीजें ऐसी नहीं लगे थे वो सब लगा दी हमने, ताकि बच्चे वहां बैठ के पढ़े। फर्स्ट ईयर बच्चों के लिए अभी भी हमने स्टॉल लगाया था, जिसपे हमारे कॉलेज क्या क्या करता है, कैसे कैसे सोसाइटीज है, उसके बारे में हमने बताया। पहले दिन से हम कोशिश करेंगे कि जो टैलेंटेड बच्चे हों वो पहले दिन से जुड़े, और जब कॉलेज से जाए तो कॉलेज के नाम बहुत सारे मेडल्स डेली हमारे लिए देखे।
1: जी बिल्कुल सर, हमारे भी यही हमारी शुभकामनाएं हैं कि आपका कॉलेज हमेशा नंबर वन रहे। लास्ट क्वेश्चन आपसे जानना चाहूंगी कि उन स्टूडेंट्स के लिए आपका क्या मैसेज है जो आज आपके कॉलेज में आए हैं?
0: हमारे लिए है कि इस कॉलेज के डिसिप्लिन को मेंटेन करके अपनी एकेडमिक्स जिस फोकस के लिए आए हैं उस पर पूरा फोकस करें, संवेदनशील इंसान बने। जब यहाँ से निकल के जाएं, तो अभी हमारे पास एक छात्रा आए हैं, कच्चा घड़ा आप कह सकती हैं, जब यहाँ से जाएं असली जिंदगी की शुरुआत उनकी वहां से होगी, तो हम उसको इस लायक करना चाहते हैं कि जब वो यहाँ से जाए तो अपने आप को एक सक्षम महसूस करें, उनको लगे कि हम कुछ भी कर सकते हैं। रेस्ट उन पर निर्भर करता है कि वो क्या चीजें चुनते हैं।
1: तो बहुत सारी जानकारी हमें मिली और बहुत जल्द अम्बेडकर कॉलेज नंबर वन कॉलेज कहलाए, यही हमारी शुभकामनाएं हैं।
0: थैंक यू सो मच, थैंक यू।
2: 102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप, प्रोग्राम अल्फा जन कैंपस कॉलिंग। अभी आपने सुना हमारी सहयोगी ऋचा वर्मा को, जो पहुंची बीआर अंबेडकर कॉलेज, वहां पे उन्होंने की बहुत सारी बातचीत हमारे स्टूडेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ एंड ऑब्वियसली प्रिंसिपल सर के साथ में। और एक विजन जो है ना वो उभरता है इन सारी बातचीत से कि आखिर हमारा आगे आने वाला जो यूथ है वो क्या सोचता है, वो किस तरह से अपने आगे आने वाली जिंदगी से लड़ने को जूझने को तैयार है या नहीं है, या क्या उसके इंटरेस्ट हैं, क्योंकि बदलती हुई जनरेशन जो है ना अपने साथ और भी बहुत कुछ बदलती है एंड ऑब्वियसली जमाना तो आगे बदलना ही होता है। फिलहाल इसी के साथ में आज का ये प्रोग्राम मैं यहीं पर समेटना चाहती हूँ। प्रोग्राम जो है अल्फा जन कैंपस कॉलिंग हर वेंसडे 4 से 5 बजे के बीच पहुंचता है आप सभी तक सिर्फ और सिर्फ 102.6 आकाशवाणी रेनबो के जरिए। फिलहाल आज का कार्यक्रम था बस यहीं तक, स्वाति को दीजिए इजाजत, सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद परिसर में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों के सभी सवालों का जवाब देगी। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है।
1: विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए।
0: वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष नीट प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग कर रहा है। संसद परिसर में श्री गांधी ने कहा कि विपक्ष को गृह मंत्री के किसी बयान में कोई दिलचस्पी नहीं है, उन्हें केवल जवाबदेही चाहिए। लोकसभा ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य भारत के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सुसज्जित बनाना है। विधेयक बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। लोकसभा ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को विचार विमर्श के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया है। विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में और संशोधन करना है। ये विधेयक विदेशी अंशदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाएगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने व्यापक विचार विमर्श के लिए विधेयक को दोनों सदनों के सदस्यों वाली संयुक्त संसदीय समिति को भेजने का प्रस्ताव रखा है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच करने वाली समिति की रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में पेश की गई। यशवंत वर्मा के सरकारी आवास पर जली हुई नकदी मिलने से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने इस वर्ष मई में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। श्री बिरला ने पिछले वर्ष 12 अगस्त को पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए समिति का गठन किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से आग्रह किया है कि वे अपने प्रिय व्यक्ति की आत्मकथा पढ़ें और रील्स तथा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के युग में शॉर्टकट अपनाने से बचें। उन्होंने विकसित भारत के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित युवाओं की निरंतर आवश्यकता पर भी बल दिया। श्री मोदी ने नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा भारतीय गणराज्य की विजय, मेरा जीवन मेरा संघर्ष का विमोचन करते हुए ये बात कही।
2: हमें भविष्य में कोविंद जी जैसे अनेकों युवा चाहिए जो परेशानियों से परास्त न हो, जो मुश्किलों से मायूस न हो, बल्कि

0: अपनी मेहनत से हर मंजिल को आसान बनाने का हौसला रखे। इसी बदलाव से सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प पूरा होगा, यहीं से आत्मनिर्भर और विकसित भारत का रास्ता बनेगा।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय कारोबारियों और नागरिकों से निष्पक्ष व्यापार पद्धतियां अपनाने, पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग को बढ़ावा देने तथा भारतीय उत्पादों और सेवाओं को वैश्विक बाजारों में ले जाते समय चक्रीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था लगभग $4 ट्रिलियन की है। उन्होंने कहा कि पिछले 4 वर्षों में किए गए मुक्त व्यापार समझौते 38 विकसित देशों को कवर करते हैं। विश्व हाथी दिवस के अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि परियोजना हाथी हाथियों की रक्षा, उनके आवासों के संरक्षण और हाथियों तथा समुदायों के बीच सौहार्दपूर्ण सह अस्तित्व को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना में हाथियों की सुरक्षा के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और AI आधारित अलर्ट, लोगों और हाथियों की सुरक्षा के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाली बाढ़ और खाइयां तथा किसानों को फसल नुकसान के लिए समय पर मुआवजा देने संबंधी उपाय किए जा रहे हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাচ্যদেশপুৰ। প্ৰিয় শ্ৰোতা, খন্তেক পাছতে দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি হিন্দী আৰু ইংৰাজীত বাতৰি শুনোৱা হ'ব।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মই জাগৃতি শৰ্মা। संसद ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे आज मंजूरी दी, लोकसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है। ये विधेयक राज्य सरकारों को सहकारी विकास में लगी किसी भी संस्था को निगम से निधि प्रदान करने की अनुमति देता है। निगम किसी भी सहकारी समिति या सहकारी विकास में लगी संस्था को सीधे ऋण और अनुदान भी प्रदान कर सकता है। सहकारी राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि विधेयक के माध्यम से देश भर के करोड़ों किसानों के कल्याण और आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी। लोकसभा ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य भारत के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सुसज्जित बनाना है। विधेयक बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। लोकसभा ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को विचार विमर्श के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया है। विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में और संशोधन करना है। ये विधेयक विदेशी अंशदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाएगा। सरकार ने आज बताया कि राष्ट्रीय एआई कौशल विकास पहल के प्रथम चरण में 60,253 नामांकन प्राप्त हुए हैं। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरगुन ने लोकसभा में लिखित उत्तर में बताया कि कुल 4,620 प्रतिभागियों ने प्रथम चरण के दो मॉड्यूल पूरे कर लिए हैं। उन्होंने बताया कि 552 प्रतिभागियों ने कार्यक्रम के प्रथम चरण के सभी चार मॉड्यूल पूरे किए हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर एक बार फिर कहा है कि वे नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई विभिन्न घटनाओं पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार हैं। संसद परिसर में श्री रिजिजू ने ये बात कही।
2: सरकार डिस्कशन चाहते हैं पार्लियामेंट में और ओपोजिशन भाग रहे हैं, ये कल्पना करना मुश्किल है, क्योंकि पार्लियामेंट डेमोक्रेसी में ओपोजिशन पार्टी डिस्कशन के लिए डिमांड करते हैं और सरकार जवाब देते हैं। यहाँ तो सरकार खुद ही कह रहे हैं कि हम डिस्कशन करेंगे, जवाब देंगे, और ओपोजिशन जवाब सुनना नहीं चाहते और भाग रहे हैं। ऐसा परिस्थिति आप कल्पना कर सकते हैं? लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से आग्रह किया है कि वे अपने प्रिय व्यक्ति की आत्मकथा पढ़ें और रील्स तथा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के युग में शॉर्टकट अपनाने से बचें। उन्होंने विकसित भारत के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित युवाओं की निरंतर आवश्यकता पर भी बल दिया। श्री मोदी ने नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा भारतीय गणराज्य की विजय मेरा जीवन मेरा संघर्ष का विमोचन करते हुए ये बात कही। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय कारोबारियों और नागरिकों से निष्पक्ष व्यापार पद्धतियां अपनाने, पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग को बढ़ावा देने का आग्रह किया है। श्री गोयल ने भारतीय उत्पादों तथा सेवाओं को वैश्विक बाजार में ले जाते समय चक्रीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने का भी आग्रह किया। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि नौ मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से भारतीय उद्योग और व्यवसायों के लिए बाजार खोले गए हैं।
3: भारत में उभरती हुई ताकत आज पूरी दुनिया देख रही है। पूरी दुनिया भारत के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाना चाहती है। पूरी दुनिया के ध्यान में आ गया है

0: ट्रिलियन डॉलर की आज की इकोनॉमी 2047 में जब हम 100 वर्ष आजादी के बनाएंगे तब ये 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी कम से कम बन जाने वाली।
1: आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि एक जड़ी बूटी एक मानक पहल का उद्देश्य पारंपरिक औषधियों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता को मजबूत करना है। नई दिल्ली में श्री जाधव ने कहा कि ये पहल भारत की समृद्ध जैव विविधता और पारंपरिक चिकित्सा विरासत की रक्षा में योगदान देगी। जेपीएससी और जेएसएससी सहित प्रदेश की अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर रांची में विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन 19वें दिन भी जारी है। विपक्ष के नेताओं ने भी प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को अपना समर्थन दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: تهران سوری با نداره، تهران سوری با نداره.
1: ভূপেন হাজৰিকাৰ কণ্ঠৰ গীতটি শুনিলে এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। খন্তেক পাছতে সংস্কৃতত বাতৰি দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
2: ये प्रयास आत्मनिर्भर भारत चक्रीय अर्थव्यवस्था और विकसित भारत के संकल्प को समुद्र क्षेत्र में नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसी के साथ कार्यक्रम विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। इस कार्यक्रम को
3: आदौ मुख्य वार्ताः। सहकारिता क्षेत्रस्य संवर्धनाय वित्तीयानुदान वृद्धि विधेयकं संसदा पारितम्। गृहमंत्री अमित शाह प्रोक्तवान यत् सर्वकारः सर्वेषु विषयेषु चर्चायै सन्नद्धः, संसद संचालनाय विपक्षात् विहितः आग्रहः। युवानः आत्मचरितानि पठेयुः, रील्स इति युगस्य लघुमार्गान् परिहरेयुः इत्यगादीत् प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। हर घर तिरंगा इत्यभियानं गतिं भजते, उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णनः अवदत् यत् वंदे मातरम् इति भावना राष्ट्रियात्मनः सशक्तिकरणं करोति। अमेरिका देशस्य सेंट लुइस नगरे आयोज्यमानस्य सिंकफील्ड चषकस्य द्वितीय चक्रे भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानानंद जावाखिर सिंदारोव इत्येतं पराजितवान्। अपि च राष्ट्रमंडल स्पर्धायां भारतीय दलेन नाइजीरियायाः लागोस नगरे तृतीय दिवसे स्वायत्तीकृतानि पंच पदकानि। अथ वार्ताः विस्तरेण। लोकसभया अद्य वैदेशिक अंशदान संशोधन विधेयकं 26,000 विस्तृत परीक्षणाय संयुक्त संसदीय समितये प्रेषितम्। एतत् विधेयकं 10,000 वर्षस्य मूलाधिनियमस्य संशोधनार्थम् आनीतमासीत्। अस्य विधेयकस्य मुख्योद्देश्यं वैदेशिक अनुदानानां प्रयोगम् अधिकाधिकं पारदर्शिकम् उत्तरदायित्वपूर्णं च विधातुम् अस्ति। गृहराज्यमन्त्री नित्यानन्दरायः व्यापक परामर्शार्थम् एतं विधेयकम् उभयोः सदनयोः संयुक्त सांसद युक्तायाः जेपीसी समित्याः पार्श्वे प्रेषयितुं प्रस्तावम् उपस्थापितवान्। तेनोक्तं यत् अस्यां समितौ लोकसभायाः 21 सदस्याः अथ च राज्यसभायाः 10 सदस्याः भविष्यन्ति। रायः असूचयत् यत् एषा समितिः शीतकालीन सत्रस्य प्रथम सप्ताहस्य अन्तिम दिनांकं यावत् स्वकीयं वृत्तं सदने उपस्थापयिष्यति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य यूनाम् आह्वानम् अकरोत् यत् ते स्वीय प्रेरणा स्रोतसाम् आत्मचरितानि पठेयुः, सहैव अन्तर्जालीयेऽस्मिन् युगे जीवनस्य लघुमार्गान् परिहरेयुः, तेन विकसित भारतस्य संकल्पम् अग्रे नेतुं कर्मठ युवकानाम् अविरत आवश्यकतायाः उपरि अपि बलं प्रदत्तम्। सः तादृशस्य वंशस्य निर्माणाय आह्वानम् अकरोत् यः बाधाः परिहार्य राष्ट्रिय आत्मनिर्भरतायाः मार्गे धैर्यपूर्वकम् अग्रे सरेत्।
4: हमें भविष्य में कोविंद जी जैसे अनेकों युवा चाहिए जो परेशानियों से परास्त न हो, जो मुश्किलों से मायूस न हो, बल्कि अपनी मेहनत से हर मंजिल को आसान बनाने का हौसला रखे। इसी बदलाव से सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प पूरा होगा, यहीं से आत्मनिर्भर और विकसित भारत का रास्ता बनेगा।
3: प्रधानमंत्री नवदिल्ल्यां पूर्व राष्ट्रपतिनः रामनाथ कोविंदस्य ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माय लाइफ माय स्ट्रगल इति शीर्षकस्य युक्तस्य पुस्तकस्य विमोचनावसरे एतत् प्रख्यापयत्।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। संसद ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। लोकसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है। ये विधेयक राज्य सरकारों को सहकारी विकास में लगी किसी भी संस्था को निगम से निधि प्राप्त करने की अनुमति देता है। निगम किसी भी सहकारी समिति या सहकारी विकास में लगी संस्था को सीधे ऋण और अनुदान भी प्रदान कर सकता है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि विधेयक के माध्यम से देश भर के करोड़ों किसानों के कल्याण और आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी। लोकसभा ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया। विधेयक का उद्देश्य भारत के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग पूरा करने के लिए तैयार करना है। विधेयक बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। लोकसभा ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को विचार विमर्श के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया है। विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में और संशोधन करना है। ये विधेयक विदेशी अंशदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाएगा। सरकार ने कहा है कि राष्ट्रीय एआई कौशल विकास पहल के प्रथम चरण में 60,253 नामांकन प्राप्त हुए हैं। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुर्गन ने लोकसभा में लिखित उत्तर में बताया कि कुल 4,620 प्रतिभागियों ने प्रथम चरण के दो मॉड्यूल पूरे कर लिए हैं। उन्होंने बताया कि 552 प्रतिभागियों ने कार्यक्रम के प्रथम चरण के सभी चार मॉड्यूल पूरे कर लिए। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर एक बार फिर कहा है कि वे नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई विभिन्न घटनाओं पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार हैं। संसद परिसर में श्री रिजिजू ने ये बात कही।
1: सरकार डिस्कशन चाहते हैं पार्लियामेंट में और ओपोजिशन भाग रहे हैं, ये कल्पना करना मुश्किल है, क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ओपोजिशन पार्टी डिस्कशन के लिए डिमांड करते हैं और सरकार जवाब देते हैं। यहाँ तो सरकार खुद ही कह रहे हैं कि हम डिस्कशन करेंगे, जवाब देंगे, और ओपोजिशन जवाब सुनना नहीं चाहते और भाग रहे हैं। ऐसा परिस्थिति आप कल्पना कर सकते हैं? लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से अपने प्रिय व्यक्ति की आत्मकथा पढ़ने और रील्स तथा सोशल मीडिया के युग में शॉर्टकट अपनाने से बचने का आग्रह किया है। उन्होंने विकसित भारत के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित युवाओं की निरंतर आवश्यकता पर भी बल दिया। श्री मोदी ने नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा भारतीय गणराज्य की विजय, मेरा जीवन मेरा संघर्ष का विमोचन करते हुए ये बात कही। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय कारोबारियों और नागरिकों से निष्पक्ष व्यापार पद्धतियां अपनाने और पुनः उपयोग को बढ़ावा देने का आग्रह किया है। श्री गोयल ने भारतीय उत्पादों और सेवाओं को वैश्विक बाजारों में ले जाते समय पुनः उपयोग की अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने का भी आग्रह किया। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि 9 मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से भारतीय उद्योग और व्यवसायों के लिए बाजार खोले गए हैं।
2: भारत में उभरती हुई ताकत आज पूरी दुनिया देख रही है। पूरी दुनिया भारत के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाना चाहती है। पूरी दुनिया के ध्यान में आ गया है कि ये $4 trillion की आज की इकोनॉमी 2047 में जब हम 100 वर्ष आजादी के बनाएंगे तब ये $30 trillion की इकोनॉमी कम से कम बन जाने वाली है।
0: आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि एक जड़ी बूटी एक मानक पहल का उद्देश्य पारंपरिक औषधियों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता मजबूत करना है। नई दिल्ली में आज श्री जाधव ने कहा कि ये पहल भारत की समृद्ध जैव विविधता और पारंपरिक चिकित्सा विरासत की रक्षा में योगदान देगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज कक्षा 12वीं की पूरक परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए। छात्र अपना परिणाम डिजी लॉकर रिजल्ट पोर्टल results.digilocker.gov.in पर देख सकते हैं। JPSC और JSSC सहित प्रदेश की अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर रांची में विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन 19वें दिन भी जारी है। विपक्ष के नेताओं ने भी प्रदर्शनकारी

0: ভজনৰ অনুষ্ঠানটি শুনিলে। এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। এতিয়া 8:45 সমাচাৰ সন্ধ্যা, 9:00 নিউজ এট 9 আৰু 9:15 স্পটলাইট দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। संसद ने सहकारी क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास को बढ़ावा देने वाला विधेयक पारित किया।

0: केरल का नाम बदलकर केरलम करने वाले विधेयक को भी मंजूरी। लोकसभा ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा वे नीट पेपर लीक से संबंधित मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने वैश्विक विकास के लिए ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्थाओं में निजी पूंजी जुटाने का आह्वान किया। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के क्षेत्र के कारण अगले दो दिन तक ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र में मूसलाधार बारिश की संभावना। और नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप के तीसरे दिन भारत ने 3 स्वर्ण सहित 5 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। संसद ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। लोकसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है। ये विधेयक राज्य सरकारों को सहकारी विकास में लगी किसी भी संस्था को निगम से निधि प्रदान करने की अनुमति देता है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि विधेयक के माध्यम से देश भर के करोड़ों किसानों के कल्याण और आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना देश में सहकारी क्षेत्र के संगठित और सतत विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी।
1: सहकारिता मंत्रालय के स्थापना के बाद माननीय उपसभापति महोदय पिछले 5 वर्षों में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। लगभग 3000 करोड़ रुपए की लागत से देश की 80,000 पैक्स को कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है। हमारे छोटे छोटे गांव के पैक्स को सक्षम बनाने के लिए पैक्स के मॉडल बायलॉज बना दिए गए और मुझे खुशी है कि देश के सभी राज्यों ने इस मॉडल बायलॉज को एडॉप्ट किया।
0: संसद ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। लोकसभा ने इसे कल पारित किया था। विधेयक का उद्देश्य संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है जबकि संविधान में इसे केरल लिखा गया है। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को व्यापक विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया है। संसद के दोनों सदनों ने आज विधेयक संसदीय समिति को भेजने को मंजूरी दी। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन करना तथा विदेशी अंशदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। लोकसभा ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य भारत के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग पूरा करने के लिए तैयार करना है। विधेयक बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद परिसर में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों के सभी सवालों का जवाब देगी। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है।
2: विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर एक बार फिर कहा है कि वे विभिन्न घटनाओं पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार हैं।
3: सरकार डिस्कशन चाहते हैं पार्लियामेंट में और ओपोजिशन भाग रहे हैं, ये कल्पना करना मुश्किल है, क्योंकि पार्लियामेंट डेमोक्रेसी में ओपोजिशन पार्टी डिस्कशन के लिए डिमांड करते हैं और सरकार जवाब देते हैं। यहाँ तो सरकार खुद ही कह रहे हैं कि हम डिस्कशन करेंगे, जवाब देंगे, और ओपोजिशन जवाब सुनना नहीं चाहते और भाग रहे हैं। ऐसा परिस्थिति आप कल्पना कर सकते हैं? लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
0: केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने संसद में चर्चा को लेकर विपक्ष पर बार बार अपना रुख बदलने का आरोप लगाया है।
4: अरे विपक्ष पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है। इस सत्र के शुरुआत से ही सरकार लगातार बातचीत कर रही है। पहले वो चर्चा डिमांड करते हैं, चर्चा के लिए सरकार तैयार होती है तो अपना स्टैंड बदल देते हैं। बार बार उनके रवैये में इस प्रकार का बदलाव ये स्पष्ट करता है कि राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष विषयहीन है, सदन चलने नहीं देना है।
0: उधर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष नीट प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग कर रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सार्वजनिक पूंजी को निजी निवेश के विकल्प के रूप में नहीं बल्कि उसके लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना चाहिए। जयपुर में ब्रिक्स सदस्य देशों में निजी पूंजी जुटाने में न्यू डेवलपमेंट बैंक की भूमिका पर आयोजित एक सेमिनार में उन्होंने ये बात कही। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक विकास के प्रमुख इंजनों में से है, लेकिन निजी पूंजी आकर्षित करना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय कारोबारियों और नागरिकों से निष्पक्ष व्यापार पद्धतियां अपनाने और पुनः उपयोग को बढ़ावा देने का आग्रह किया। श्री गोयल ने भारतीय उत्पादों और सेवाओं को वैश्विक बाजारों में ले जाते समय चक्रीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने का आग्रह भी किया। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि नौ मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से भारतीय उद्योग और व्यवसायों के लिए बाजार खोले गए हैं।
5: भारत में उभरती हुई ताकत आज पूरी दुनिया देख रही है। पूरी दुनिया भारत के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाना चाहती है। पूरी दुनिया के ध्यान में आ गया है कि ये $4 trillion की आज की इकोनॉमी 2047 में जब हम 100 वर्ष आजादी के मनाएंगे तब ये $30 trillion की इकोनॉमी कम से कम बन जाने वाली है।
0: आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि एक जड़ी बूटी एक मानक पहल का उद्देश्य पारंपरिक औषधियों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता मजबूत करना है। नई दिल्ली में श्री जाधव ने कहा कि ये पहल भारत की समृद्ध जैव विविधता और पारंपरिक चिकित्सा विरासत की रक्षा में सहयोग देगी। इस बीच आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव की अध्यक्षता में हिंदी सलाहकार समिति की तीसरी बैठक आयोजित की। श्री जाधव ने कहा कि ये समिति हिंदी के उपयोग और प्रचार को मजबूत करने और इसे जन कल्याण तथा संचार का एक प्रभावी माध्यम बनाने के लिए महत्वपूर्ण मंच है। रेल मंत्रालय ने पश्चिमी रेलवे के गैरतपुर अहमदाबाद खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए 153 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। ये परियोजना पश्चिमी रेलवे के मौजूदा जारी रोड ओवर और अंडर ब्रिज, फुट ओवर ब्रिज, जल निकासी व्यवस्था में सुधार और पुनर्निर्माण कार्यों के अंतर्गत स्वीकृत की गई है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि देश में लगभग 440 अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप पंजीकृत हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर देते हुए डॉ सिंह ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र ने 52 गैर सरकारी संस्थाओं को विभिन्न अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए 113 अधिकार पत्र प्रदान किए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसे लेकर लोगों में व्यापक उत्साह भी देखा जा रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना किया। छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल और माओवाद से अत्यधिक प्रभावित रहे बस्तर इलाके में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यात्रा में बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए।
6: छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में शांति, एकता और राष्ट्र निर्माण का संदेश लेकर आज से तिरंगा यात्रा शुरू हुई है। इस यात्रा का नेतृत्व छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा कर रहे हैं। यह यात्रा बस्तर के दुर्गम और आदिवासी इलाकों से होकर गुजरेगी। विशेष तौर पर यह यात्रा उन क्षेत्रों से होकर गुजरेगी जहां पूर्व में माओवादियों ने बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया था। 3 दिनों तक चलने वाली यह यात्रा 14 अगस्त शुक्रवार को बीजापुर जिले के कर्रेगुट्टा पहाड़ी पर पहुंचकर संपन्न होगी। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: जम्मू कश्मीर में रियासी जिले में चिनाब नदी में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। हरियाणा के भिवानी में शहीद

0: मदन लाल ढींगरा स्मारक से एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। महाराष्ट्र में देशभक्ति रैलियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम और अन्य गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान देशभक्ति, राष्ट्रीय चेतना और स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान का प्रतीक है। मिजोरम में दोपहिया वाहनों की एक रैली का आयोजन किया गया। मौसम विभाग ने अगले 12 घंटों में उत्तरी बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना व्यक्त की है। इसके कारण कल ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में मूसलाधार बारिश होने की आशंका है। इसके अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल और उससे सटे बांग्लादेश के तटों से होते हुए उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। मुंबई में आज घाटकोपर पश्चिम के चिराग नगर स्थित एक चौल में भूस्खलन होने से 7 लोगों की मौत हो गई और 7 अन्य घायल हो गए। सुबह एक छोटी पहाड़ी से मिट्टी और मलबा चौल के 2 से 3 कमरों पर गिर गया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज कक्षा 12 की पूरक परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र अपना परिणाम डिजी लॉकर रिजल्ट पोर्टल results.digilocker.gov.in पर देख सकते हैं। जेपीएससी और जेएसएससी सहित प्रदेश की अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर रांची में विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन 19वें दिन भी जारी है। विपक्ष के नेताओं ने भी प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को अपना समर्थन दिया है। आज हरियाली अमावस्या के अवसर पर 31 राज्यों में 50,000 से अधिक पौधे लगाए गए। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हरियाली अमावस्या प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। दुनिया के कई हिस्सों में आज महत्वपूर्ण खगोलीय घटना पूर्ण सूर्य ग्रहण होने जा रहा है। ये सूर्य ग्रहण उत्तरी ग्रीनलैंड, आइसलैंड, उत्तरी रूस, अटलांटिक महासागर, स्पेन और पुर्तगाल के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। बेंगलुरु स्थित रमन अनुसंधान संस्थान ने सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य की जटिल चुंबकीय संरचना का अध्ययन करने की व्यवस्था की है। भारत से दिखाई न देने वाला ये पूर्ण सूर्य ग्रहण रात 9:04 पर शुरू होगा और चंद्रमा की छाया सूर्य को 2:18 तक ढक कर रखेगी। नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी प्रतियोगिता के तीसरे दिन भारत ने 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। कनाग लक्ष्मी, राजेंद्रन, शांतिमोल शेरजन और सिंह करण सिंह ने स्वर्ण पदक हासिल किए। वहीं जॉयस आशिता ने रजत और कुमारीशन पद्मा गीशो निधि ने कांस्य पदक अपने नाम किया। प्रतियोगिता में भारत ने 8 स्वर्ण, 7 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 29 पदक जीत लिए हैं। विश्व हाथी दिवस के अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने हाथियों के संरक्षण को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। श्री यादव ने कहा कि हाथियों की सुरक्षा के लिए कई आधुनिक उपाय किए जा रहे हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने सहकारी क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास को बढ़ावा देने वाला विधेयक पारित किया। केरल का नाम बदलकर केरलम करने वाले विधेयक को भी मंजूरी। संसद के दोनों सदनों ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा वे नीट पेपर लीक से संबंधित मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने वैश्विक विकास के लिए ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्थाओं में निजी पूंजी जुटाने का आह्वान किया। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के क्षेत्र के कारण अगले 2 दिन तक ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र में मूसलाधार बारिश की संभावना। और नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप के तीसरे दिन भारत ने 3 स्वर्ण सहित 5 पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening, this is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Parliament passes bill to enhance funding and development of cooperative sector, also gives nod to legislation to rename state of Kerala as Keralam. Both houses refer Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 to Joint Parliamentary Committee for further scrutiny.